0: शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ना प्रारंभ हो जाता है। मन को उपयोगी कार्यों में लगाए रखना स्वास्थ्य प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है। नदी की प्रवाहमान धारा की तरह हमारे काम सरल स्वाभाविक रूप से होते रहें तो स्वास्थ्य बहता हुआ आकर स्वयं हमारे चरण धोएगा। रोगी होना शरीर का स्वभाव नहीं है, रुग्णता प्रकृति नहीं विकृति है। रोगी व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता। आध्यात्मिक उन्नति की पहली शर्त शारीरिक स्वास्थ्य है। शरीर की थकान से पहले मनुष्य का मन थक जाता है। शरीर के रोगी होने से पहले मनुष्य का मन रोगी हो जाता है। इसलिए हमें मानसिक क्लांति पर विजय पाने का उद्योग करना चाहिए। जब तक चरित्र में अवगुण रहेंगे आदर्श स्वास्थ्य की आशा व्यर्थ है। कुविचार मानसिक विकार है और चूंकि शरीर मन का अनुयायी है मानसिक विकार शरीर को विकृत कर देते हैं। शरीर में मन मुख्य है। मन में कुत्सित विचारों के पैदा होते ही शरीर का
1: नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी टानागर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो की घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा। आज ये साल 2026 जून महीने का शनिवार दिन और तारीख है 20। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग और तकनीकी अभियंता ताना तुम। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले कार्यक्रम पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए कालो तालिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए या पता नहीं डायरेक्ट न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इंफोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायरेक्ट न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्र समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे और स्वदेश में निर्मित 3 युद्धपोत दुनागिरी, अग्रय और संशोधक राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री लगभग 590 करोड़ रुपए की लागत की रेल परियोजनाओं, हावड़ा में 300 बिस्तरों वाले नए रेलवे अस्पताल और पूर्वी मिदनापुर में एक रेल ओवर ब्रिज सहित कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री 315 किलोमीटर से अधिक दूरी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 49 ग्रामीण सड़क परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का लक्ष्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
2: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
1: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना BHEL की स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2,000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि तय फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी नागरिक का तय किए गए फुटपाथ पर चलने का मौलिक अधिकार प्राथमिक है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जाएगी। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। एक दुखद मोटर दुर्घटना के क्षतिपूर्ति मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया। अपने 5 वर्षीय पुत्र को पिता द्वारा स्कूल ले जाते समय कथित दुर्घटना में बच्चे की मौत हो गई थी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्व के मौजूदा अस्थिर दौर में राष्ट्रीय हितों, रणनीतिक स्वायत्तता और विविध मतों के साथ संतुलन बनाए रखते हुए सभी देशों के साथ बेहतर संबंधों पर बल दिया। कल शाम नई दिल्ली में भारत अमेरिका फोरम को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने जटिलताओं और चुनौतियों का सामना करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में भारत और अमरीका की साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रगति के साथ साथ भारत के हितों का भी विस्तार होगा और विविधता बढ़ेगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। श्री अग्रवाल वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय में सचिव हैं। वे वित्तीय कार्रवाई कार्यबल में भारतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं तथा धन शोधन और आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने पर अंकुश रखने वाली वैश्विक संस्था के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं। 17-19 जून के दौरान कार्यबल की पूर्ण बैठक में ये निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए एक बड़ी विजय बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की बात की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। श्री गाइस थॉमसन को कार्यबल का अगला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। मेजबान टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। दोहा डायमंड लीग में भारत के जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा कतर में 4th स्थान पर रहे। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is

नमस्ते दोस्तों, आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी जानागर कारण FM 103.1 MHz है। तो दोस्तों, इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ। दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत पेश है, भक्ति गीत।

0: दोस्तों ये था भक्ति गीत या आकाशवाणी टनगर करण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। अब आप सुन पाएंगे एक आलो श्रोता का कार्यक्रम।
1: सी आकाशवाणी टनगर है तनगा दमरो का जब दो लाल रियो फोर गालो छामी ना ने तेरे आरसो का गालो में के अगर मैं लेंजी रे बैंड के मेंजी नांगो गुमार लेंदो प्राइम मिनिस्टर निर्मल नरेंद्र मोदी लुगालो बेक्षित भारत लगसी का हमने जाके जितेला सिगे गोय बार देश गनारो यूथ ओक तुको पिनी काम ने कदम ने आदे कादक ना सेक्टर लो अगर रिला दोपा तिपाला रिला दाग बम ला याका को बदाम ने कातुम दुना कम तु मेठाला प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना सिगे क्लास 10 12 पको ग्रेजुएट होला दुकुने कादक लगा ब मैकेनिकल फिशरीज ओक लोकल क्राफ्ट ओक कप कवा अबा लोकम ट्रेनिंग कम ने गवर्नमेंट का पहले लोक फ्री ब रिग दुना कम तु मेठाला भारत देश की इजा स्टार्टअप इकोनॉमी ओक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लो अतिर लोग का दम को यारों दुना के हमला में पकता तो अरुणाचल प्रदेश गवर्नर निर्मल केटी फरनायक मुनी का 2025 का लुमी पॉल का ऑडिट रिपोर्ट हमने कादू कुला स्टेट का मुर्को हमने ममन पकु हम दूला सिंह 2026 लोग का स्टेट का दिन करोड़ मुर्को हमने अलग कबाडूत कुला आइन मुर्को गाइंडे को हमने

testing am kom rila do kuem tu tanga dong galo mingken agam sin akasoni thanagar lok ka tafadu silo maroga omeni jer anyama gadam ne majba ritur re nam ok moi mamar nam khadula national commissioner for women of bharat des ka naru state ok union territories gadam ne prevention prohibition and redress force act 2013 sigim de din sijab kajiru lokam da mento yo laga awni jer anyama gadam ne ayuga namnasu lok indian daklo दीमा बचिका ओफागला मेनो मौला ओक जेतला रिनगा दमने मोरिग रिकेक्ट ओका अमला दिन सिजा बरोगतो सकन आलमान अजनापुक गनगा दमने तानी मौसो को रिकॉर्ड काम अमदोला स्टेट कमिश्नर ऑफ पुलिस ओक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गदमने अचिबे एक्शन लाज रूल ओका अमला मेंकेन जितो रूरल डेवलपमेंट गला पंचायती राज सेक्रेटरी आईएस नली डॉक्टर सोनल स्वरूप अरुणाचल प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन ग स्टेट लेवल दुकुमने दोगा दोला लाख फटी डीडी योजना गलग से गाम ने बेंटम तू नली डॉक्टर सोनाल मिंपा जिला गवर्नमेंट भारत देश गनारू नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन ओको सेल्फ ग्रुप गए अनगदम ने अन्य मामला चित एक लाख जाको फादो बे कागुर रहम तू सगो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ओको नगर ना स्किल ने चेंदाक बा गवर्नमेंट है ग पहले लोग का ट्रेनिंग हमको रिगदूना कम तू मेंटल आ सिलो मरो अनगद नमनासो को अफाव हमने कागुर यादा कम तू ला सर्मदा दा अनगद है इजिव पुगला इकु यु पुगला गल थांगो पुगला अगन कागुर जिला दाग बयमला लाखपति दीदी योजना सिगिम ने मोले थुन में कम तु लिकाबाली का सर्किट हाउस का कॉन्फ्रेंस हॉल लो उद्यम योजना गला फसाई स्कीम का लग सिगम ने मेंटम दोला दोना लोगो ब लोदुम गतो कबालो पुलिक ने गदम ने बिजनेस ओका गवर्नमेंट टेंडर रिकाल अप मन गदम ने उद्यम योजना लो आयुग अमिनम ने एदिक तो कम तु मेंटला लोकल बिजनेस ला दोनम तुना मोला मार्केट लो पुगला पमन का दमने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई लो अमेन हमने इलेक्ट कम तो ओके सो का बेनिफिट्स एंड कम छेनला रला काम ला मेंटम ता तो मेट्रोलॉजिकल सेंटर इठाने करे चामनी डिस्ट्रिक्ट गो येलो अलर्ट जोन लो जिले तो सो गो निदो दोर दो गुम तत ब रिबर दे तो हमला मेंकिन जितो क तने का सिर्फ गलो मेंकिन आगो म अग तने का

दारू दैनिक में अभी आप समाचार सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, सुबह की पहली किरण के साथ वक्त हो चला है हमारे अगले प्रोग्राम का, जिसका आप सभी का बेसब्री से इंतजार रहता है। शुरू करने जा रहे हैं आपका अपना फेवरेट सेगमेंट सुबह सवेरे। आज का ये सफर बेहद खास और गहरा होने वाला है, क्योंकि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से हेल्थ की बात नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे हमारे लाइफस्टाइल, मेंटल हेल्थ, कोर फिजिकल स्ट्रेंथ और हमारी संस्कृति से जुड़े योगा के कुछ अद्भुत नुस्खों पर। तो चलिए इस खूबसूरत सुबह की एक एकदम दर्शनीय शुरुआत करते हैं इस बेहतरीन पहले गीत के साथ।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप जुड़ रहे हैं अरुण एफएम के साथ प्रोग्राम सुबह सवेरे में। अक्सर जब हम हेल्थ की बात करते हैं तो हमारा ध्यान सिर्फ ज्ञान या जिम या हैवी डाइटिंग पर जाता है, लेकिन सच ये है कि अच्छी सेहत ही शुरुआत हमारे दिमाग और हमारे शरीर के बैलेंस से होती है। और जब बैलेंस की बात करते हैं आती है तो योगा से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। योगा सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है दोस्तों, ये एक साइंस है। आज हम सुबह की शुरुआत में बात करेंगे सुखासना और तदासना की। जो लोग कहते हैं कि उनसे मुश्किल पोस्चर नहीं होते, तो उनके लिए तदासना सबसे बेस्ट है। आपको सिर्फ सीधे खड़े होना है, अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और अपनी एड़ियों पर पूरे शरीर का वजन उठाना है। यह आपके पूरे नर्वस सिस्टम को जगाता है और आपकी स्पाइन को लंबा करता है। इसके बाद आता है वृक्षासन यानी ट्री पोज। एक पांव पर खड़े होकर बैलेंस बनाना है। ये आसान देखने में सरल लगता है, लेकिन ये आपके दिमाग के डिस्ट्रैक्शन को खत्म कर देता है। अगर आपका मन भटकता है, फोकस नहीं बन पाता है, तो रोज सुबह वृक्षासन कीजिए। ये आपके ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर को बैलेंस करता है और आपके दिन भर काम रखता है। इस ध्यान और शांति को अपने अंदर महसूस कीजिए।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। अब योगा के साथ साथ बात करते हैं थोड़ी डायनामिक फिजिकल एनर्जी की, लेकिन बिना किसी बोरिंग या पुराने रूटीन के। बहुत से लोग अक्सर कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, तो वो क्या करें। दोस्तों, आपको घंटों जिम में पसीना बहाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम बात कर रहे हैं फंक्शनल मूवमेंट की। इसका मतलब है अपने रोजमर्रा के कामों में एक्टिविटी को शामिल करना, लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल या थोड़ी देर खड़े होकर काम करना। अगर आप घर पर हैं तो सिर्फ 10 मिनट का बॉडी वेट स्क्वाट्स और लंजेस कीजिए। यह एक्सरसाइज आपके लोअर बॉडी और कोर स्ट्रेंथ को मजबूत करती है, जिससे बढ़ती उम्र में अभी घुटनों और कमर का दर्द नहीं होता। और इसके साथ ही एक छोटी सी न्यूट्रिशन टिप जो आपकी एनर्जी को क्रैश नहीं होने देगी। सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीने की आदत को थोड़ा बदलिए। खाली पेट कैफीन आपके स्टमक के एसिड लेवल को बढ़ाता है और आपको डिहाइड्रेशन देता है। कोशिश करें कि पहले एक ग्लास सादा या हल्का गुनगुना पानी पिए, उसके बाद ही अपनी पसंद की चाय या कॉफी का लुत्फ उठाइए। अगर हो सके तो पानी में थोड़ा सा नींबू या हनी मिला सकते हो, जो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में मदद करेगा। चलिए इसी हेल्थ कैप्सूल के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं एक और खूबसूरत से।

दोस्तों अब योगा के साथ साथ बात करते हैं थोड़ी डायनेमिक फिजिकल एनर्जी की, लेकिन बिना किसी बोरिंग या पुराने रूटीन के। बहुत से लोग कहते हैं कि उनके पास एक्सरसाइज के वक्त नहीं होता, पर अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप स्क्वाट्स या फिर आप लंजेस वगैरह कुछ कर सकते हैं। दोस्तों हमने बॉडी को स्ट्रेच कर लिया, एक्सरसाइज की बात कर ली, लेकिन हमारा सबसे बड़ा लाइफ फोर्स क्या है? हमारी सांस। इसलिए योगा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है प्राणायाम। आज जाते जाते मैं आपको बताना चाहूंगी अनुलोम विलोम और कपालभाति के बारे में। रोज सुबह अगर आप सिर्फ 5 मिनट एक नोस्ट्रल से सांस अंदर लेते हैं और दूसरी से छोड़ते हैं तो आपके शरीर का ऑक्सीजन लेवल 30% तक बढ़ जाता है। ये आपके लंजेस को डिटॉक्सिफाई करता है और स्किन पर एक नेचुरल ग्लो लाता है। वही कपालभाति आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करता है और लंबी और गहरी सांस लेने की आदत डाली, क्योंकि जब हम गुस्से या स्ट्रेस में होते हैं हमारी सांसें छोटी हो जाती है। दोस्तों इसी के साथ सुबह सवेरे के आज के इस सेगमेंट को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आज की ये डिटेल बातें आपको अपनी लाइफस्टाइल में थोड़े बदलाव लाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब मुझे यानी अपने दोस्त को दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि आगे भी बेहद दिलचस्प प्रोग्राम आपका इंतजार कर रहा है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। दोस्तों अब आप सुन पाएंगे आप अपने श्रोताओं का कार्यक्रम।

दोस्तों आप सुन रहे थे आबादने दालेक में न्यूज, और अब वक्त हो चला है सुबह के उस सफर का जहां ज्ञान का भंडार खुलेगा। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों सुबह की इस ठंडी और सुहानी हवा के साथ हमारा दिमाग नए ज्ञान को सीखने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, इसीलिए हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा सेगमेंट मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। लेकिन ज्ञान का सफर पर निकलने से पहले चलिए मौसम को और सुहाना बनाते हैं इस बेहतरीन सुबह के पहले गाने के साथ।

वेलकम बैक दोस्तों, गाने के बाद अब सीधे रुख करते हैं विश्व इतिहास के उन पन्नों की तरफ जो आज ही के दिन यानी 20 जून को बेहद खास और अहम बनाते हैं। तो दोस्तों, ग्लोबल हिस्ट्री में आज क्या कुछ हुआ था, आइए बिल्कुल गहराई से जानते हैं। आज ही के दिन 19 जून 1837 को क्वीन विक्टोरिया के चाचा किंग विलियम चार के निधन के बाद लगभग 18 साल की उम्र में क्वीन विक्टोरिया ने ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की गद्दी संभाली थी। उनका ये शासन काल लगभग 63 साल और 7 महीने तक चला, जिसे ब्रिटिश हिस्ट्री में विक्टोरियन एरा के नाम से जाना जाता है। इस दौर में ब्रिटिश एम्पायर का सबसे बड़ा विस्तार हुआ। इंडस्ट्रियल, पॉलिटिकल, साइंटिफिक और मिलिट्री बदलाव आए और इसी दौर ने पूरे वर्ल्ड का जियोपॉलिटिकल मैप हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। कोल्ड वॉर यानी शीत युद्ध के चरम दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के ठीक बाद यूनाइटेड स्टेट और सोवियत यूनियन के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लिंक स्थापित करने के लिए एक हिस्टोरिक समझौता हुआ, जिसे व्हाइट हाउस क्रेमलिन हॉटलाइन या रेड टेलीफोन कहा जाता है। इसका मुख्य मकसद दोनों सुपर पावर्स के नेताओं के बीच डायरेक्ट संपर्क बनाना था, ताकि किसी भी अचानक गलतफहमी, एक्सीडेंटल कोडिंग या टेक्निकल एरर की वजह से दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध ना शुरू हो जाए। इस हॉटलाइन ने आने वाले समय में कई बड़े ग्लोबल क्राइसिस को टालने में अहम भूमिका निभाई।

ह्यूमन स्पेस एक्सप्लोरेशन के इतिहास में आज ही के दिन सुनहरे अक्षरों में आज ही के दिन यानी 1969 में दर्ज है, जब यूनाइटेड स्टेट के अपोलो 11 मिशन का लूनर मॉड्यूल ईगल चांद की सतह के बेहद करीब पहुंच चुका था। एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग और बस ऑल्ड्रिन ने चांद के सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी पर लैंड करने की आखिरी और सबसे मुश्किल तैयारियां पूरी की थी। इस मिशन ने न सिर्फ स्पेस रेस को खत्म किया बल्कि पूरी मानव जाति को यह दिखाया कि सही टेक्नोलॉजी और संकल्प से ब्रह्मांड के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचना मुमकिन है। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में आज ही के दिन लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर पहला आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला गया था। ये मुकाबला उस जमाने की दो सबसे खूंखार और ताकतवर टीम्स वेस्टइंडीज और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुआ था। वेस्टइंडीज ने क्लाइव लॉयड की शानदार 102 रन की कैप्टनसी पारी के बदौलत ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बड़ा टारगेट रखा और मैच जीतकर पहली बार ऑफिशियली क्रिकेट का विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया, जिसे लिमिटेड ओवर क्रिकेट की लोकप्रिय पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ गई। दोस्तों, अगर हम इन ग्लोबल इवेंट्स का एक डीप एजुकेशनल एनालिसिस करें तो हमें समझ आता है कि कैसे ये सारी घटनाएं आपस में जुड़ी हैं। क्वीन विक्टोरिया का दौर जो पॉलिटिकल का बदलाव था, लेकिन जो हॉटलाइन साल 1963 में बनी उसने दुनिया को सिखाया कि आखिरी मोड़ पर डिप्लोमेसी और कम्युनिकेशन ही सबसे बड़ी ताकत होती है, ना कि वेपन डिप्लोमेट। किसी ने सच ही कहा है कि जब तक नेताओं के बीच बात का रास्ता खुला है तब तक परमाणु युद्ध को खतरा तला जा सकता है। वही स्पेस रेस में जहां 1969 में टेक्नोलॉजी ने इंसान को चांद तक पहुंचाया, उसी टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन का असर था कि साल 1975 तक आते आते लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट को लाइव ब्रॉडकास्ट के जरिए पूरे विश्व में एक ग्लोबल आइडेंटिटी मिली। हिस्ट्री का यही कनेक्शन हमें सोचना सिखाता है। चलिए, अब वक्त हो चला है हमारे आज के दूसरे म्यूजिकल ब्रेक का।

दोस्तों आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुबह सवेरे। आओ माफी चाहूंगी, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मॉर्निंग इंफोटेनमेंट। अब ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब रुख करते हैं हमारे देश के इतिहास पर, जहां आज ही के दिन कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हुई जिन्होंने हमारा समाज और भारत की ताकत को दुनिया के सामने दिखाया। 1887 ओपनिंग ऑफ विक्टोरिया टर्मिनस मुंबई। भारत के ट्रांसपोर्ट और आर्किटेक्चर के इतिहास में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुंबई का सबसे बिजी और ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन, जिसे पहले विक्टोरिया टर्मिनस कहा जाता था, आज छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के नाम से जाना जाता है। आम जनता के लिए पूरी तरह खोला गया था। इस बिल्डिंग को मशहूर आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने हाई विक्टोरियन गोटिक रिवाइवल स्टाइल में डिजाइन किया था, जिसे बनने में लगभग 10 साल का समय लगा था। आज ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में शामिल है। आज ही के दिन 1990 में भारत की फॉरेन पॉलिसी और मिलिट्री हिस्ट्री के इलाज से आज का दिन एक बड़ा मोड़ था, जब इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका में चल रहे सिविल वॉर के दौरान वहां की सरकार की मदद और शांति स्थापित करने के लिए भेजी गई इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को पूरी तरह से वापस बुलाने का ऑपरेशन सफलतापूर्वक पूरा किया था। 2000 में भारत के स्पेस सेक्टर और कम्युनिकेशन नेटवर्क को मजबूत करने के लिए इसरो ने आज ही के दिन इनसेट 3B सैटेलाइट को पूरी तरह से ऑपरेशनलाइज यानी कार्यरत किया था। इस सैटेलाइट को फ्रेंच गुयाना से लॉन्च करने के बाद इसकी सर्विस शुरू की गई थी, जिससे पूरे देश में टेली मेडिसिन, ई गवर्नेंस, इमरजेंसी कम्युनिकेशन और दूरदराज के इलाकों जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली टेरेन्स में मोबाइल और इंटरनेट कनेक्टिविटी को एक बहुत बड़ी ताकत और राहत मिली थी। 2014 में भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी शहीद उधम सिंह, जिन्होंने साल 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए साल 1940 में लंदन के कॉक्सन हॉल में जाकर पंजाब के पुराने लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडवर को गोली मारी थी, उनके अहम स्थितियों और पर्सनल बिलोंगिंग को पूरी सरकारी और राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव सुनाम में लाया गया था। दोस्तों चलिए अब बिना किसी देर के सीधे रुख करते हैं सुबह की ताजा खबरों की तरफ और बात करते हैं दी अरुणाचल टाइम्स की आज की यानी 20 जून 2026 की सभी बड़ी और महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। मेजोरिटी सिक्योरिटी सक्सेस इन टीरप डिस्ट्रिक्ट के सेंसिटिव एरियाज में चल रहे एक इंटेंसिव एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। असम राइफल्स और लोकल पुलिस के एक ज्वाइंट टैक्टिकल टीम ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर छापेमारी करके एक एनएससीएन के ऑपरेटिव को दर्द दबोचा है। इस ऑपरेशन के दौरान ऑपरेटिव के पास से भारी मात्रा में इलीगल ऑटोमेटिक वेपन्स, लाइव एम्यूनिशन और इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स जब्त किए गए हैं। खुफिया एजेंसी के मुताबिक ये ऑपरेटिव बॉर्डर स्पेल के आसपास के इलाकों में एक्सटॉर्शन और डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज को अंजाम देने की साजिश रच रहा था, जिसे अब नाकाम कर दिया गया है। डिमांड फॉर टर्मिनेशन ऑफ एपीएसटी एंड सचकान वोल्वो एग्रीमेंट। स्टेट के पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क और ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी को लेकर एक बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया है, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोकल ऑर्गेनाइजेशन ने स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन सौंपा है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस और प्राइवेट ऑपरेशनल सचकान वोल्वो के बीच चल रहे करंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को तुरंत टर्मिनेट करने की मांग की है। ऑर्गेनाइजेशन के आरोप है कि इस एग्रीमेंट को चलते लॉन्ग रूट ऑपरेशन के रूल्स, रेवेन्यू शेयरिंग मॉड्यूल्स और लोकल गाइडलाइंस में गंभीर वायलेशन और प्रोसीजरल लैप्स देखने को मिल रहे हैं, जिससे स्टेट ट्रांसपोर्ट को नुकसान हो रहा है और आम जनता के लिए सर्विस प्रभावित हो रहे हैं। तो दोस्तों आज मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट के इस डिटेल सफर में हमने दुनिया और देश के इतिहास से लेकर हमारे अपने राज्य अरुणाचल प्रदेश की खबरों की सभी महत्वपूर्ण सुर्खियों पर बात की। अब वक्त हो चला है आज के सेगमेंट को आपसे सेगमेंट से आप सबसे विदा लेने का।
या आकाशवाणी ईटानगर का रन FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

दोस्तों, तागिन बादशाह की खबरों के सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है हमारे अगले बेहद महत्वपूर्ण और जनता के सबसे पसंदीदा कार्यक्रम का। जी हाँ, शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम सदाबहार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस सदाबहार शो का एक ही मकसद है, आपको आपके इलाके के मौसम के मिजाज से हर पल बाखबर रखना, ताकि आपका हर दिन सदाबहार बना रहे।

वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सदाबहार प्रोग्राम सिर्फ आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। आइए अब बिल्कुल गहरे से बात करते हैं मौसम के हाल की, और सबसे पहले रुख करते हैं हमारी स्टेट कैपिटल ईटानगर और इसके आसपास के पूरे कैपिटल कॉम्प्लेक्स का। दोस्तों, ईटानगर में आज सुबह से ही आसमान में घने काले बादल छाए हुए हैं और मौसम काफी ठंडा बना हुआ है। मौसम विभाग के ताजा रिपोर्ट के मुताबिक आज दिन भर ईटानगर में रुक रुक कर हल्की से मध्यम बारिश होने की पूरी संभावना है। इतना ही नहीं, दोपहर और शाम के समय कुछ इलाकों में एक दो तेज बौछारें भी गिर सकती है। अगर तापमान की बात करें तो आज ईटानगर का मैक्सिमम टेम्परेचर लगभग 31 डिग्री सेल्सियस तक जाने के अनुमान है, जो कि आम दिनों से थोड़ा कम है। वही रात तक मौसम और ठंडा हो जाएगा और मिनिमम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास ठंडक बनाए रखेगा।

लगातार हो रही बारिश की वजह से हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी का लेवल काफी हाई रहेगा, जो लगभग 85% से 90% तक जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जब बारिश रुकेगी तो थोड़ी उमस महसूस हो सकती है। हवा की रफ्तार लगभग 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी, जो सुबह और शाम को ठंडक का एहसास कराएगी। तो जो लोग भी घरों से निकल रहे हैं, अपनी छतरी और रेनकोट साथ रखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए ईटानगर के मौसम के बाद अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे म्यूजिकल ब्रेक का। सुनिए ये गाना और मैं अभी हाजिर हूँ पकड़ी हूँ स्टेट के बाकी इलाकों के मौसम के हाल के साथ।

दोस्तों आइए अब हमारे इस डिटेल वेदर अपडेट की आखिरी और तीसरी भाग में चलते हैं। हमारे हाई ऑल्टीट्यूड बोर्डो डिस्ट्रिक्ट की तरफ जैसे तवांग, वेस्ट कमेंग, अपर सुबनसिरी, अंजाव और दिबांग वैली, तवांग और उससे ऊपर के इलाकों में आज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। घने बादलों और लगातार चल रहे तेज बारिश के चलते ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर विशेषकर सेला पास और उसके आसपास के हाईवेज पर लैंडस्लाइड और मडस्लाइड का खतरा काफी बढ़ गया है। इसलिए सुबह सुबह सफर करने वाले सभी ड्राइवर और जनता को खड़े निर्देश दिए गए हैं कि बिना किसी इमरजेंसी के ऊंचे रास्तों पर ट्रैवल करने से बचे। इन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तवांग में आज मैक्सिमम टेम्परेचर मुश्किल से 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और रात के समय तापमान सिंगल डिजिट यानी 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की पूरी उम्मीद है। बमदिला में भी टेम्परेचर 18 और 12 डिग्री के बीच बना रहेगा। जीरो वैली और आसपास के इलाके में हमारी में ऊंचाई पर होने के बाद ऊंचाई होने के कारण मौसम हमेशा की तरह बेहद ठंडा और खुशगवार बना हुआ है। आज जीरो में सुबह से ही घना कोहरा और मेघ देखने को मिल रहा है जिससे रास्तों पर विजिबिलिटी थोड़ी कम हुई है। यहां दिन का मैक्सिमम टेम्परेचर सिर्फ 22 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा और रात को यह गिरकर 16 डिग्री सेल्सियस तक। पासीघाट और नामसाई इन लोअर ऑल्टीट्यूड और प्लेन्स के तटीय इलाकों में आज मौसम काफी नरम और गीला रहेगा। मौसम विभाग ने यहां थंडर डेवलपमेंट के साथ साथ कंटिन्यूस रेनफॉल का अलर्ट जारी किया है। कुछ निचले इलाकों में पानी भरने की संभावना को देखते हुए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा है। यहां का मैक्सिमम टेम्परेचर 29 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा जो काफी सुहाना है। तो दोस्तों आज हमारे मौसम विशेष प्रोग्राम सदाबहार में हमने ईटानगर समेत पूरे अरुणाचल प्रदेश के मौसम के तीनों भागों को बिल्कुल विस्तार से समझा। मानसून पूरी तरह से एक्टिव है इसलिए सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आकाशवाणी ईटानगर का रेडियो एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: सबका प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
0: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
1: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष। बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
1: करो योग, रहो निरोग। करो योग, रहो निरोग।
0: इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान, पीएम किसान।
4: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। 9 करोड़ से अधिक किसान होंगे लाभान्वित। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। और भारत और अफगानिस्तान के बीच एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच आज चेन्नई में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
6: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
5: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और

0: शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे और कलकत्ता में रोइड रोड पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में नेतृत्व करेंगे। इसी अवसर पर वे 3 स्वदेशी युद्धपोत INS दुनोगिरी, INS संशोधक और INS अग्रय राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री कई महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। कृषि क्षेत्र में श्री मोदी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत करेंगे। संदीपन दास गुप्त के साथ काशफी नहार, आकाशवाणी कोलकाता।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और मंदिर क्षेत्र में पश्चिमी महाराष्ट्र मंदिर विकास योजना के तहत चल रही विकास परियोजनाओं की समीक्षा करेंगे। श्री शाह कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। कार्यबल की पूर्ण बैठक में यह निर्णय लिया गया। विदेश मंत्रालय ने श्री अग्रवाल के चयन को भारत के लिए बड़ी जीत बताया है। मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के तहत पिछले 12 वर्ष में उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज जानकारी सशक्त भारत के संकल्प को साकार करने वाली सरकार की परिवर्तनकारी पहलों के बारे में।
2: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने भारत के हाईटेक क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। सशक्त भारत के 2 महत्वपूर्ण आधार हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास और स्पेस स्टार्टअप्स की तेजी से बढ़ती संख्या। सरकार की नीतियों और फैसलों से सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सिर्फ योजनाएं ही नहीं बनी बल्कि अब निर्माण और डिजाइन से जुड़े कई इकाई भी काम कर रहे हैं। दिसंबर 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया गया। इसके लिए 76,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया। इस योजना के तहत सिलिकॉन फैब, कंपाउंड सेमीकंडक्टर इकाई, असेंबली और टेस्टिंग सुविधाओं तथा चिप डिजाइन के लिए 50% तक वित्तीय सहायता दी गई। साल 2026 में सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया, जिसके लिए 1,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योगों के सहयोग से शोध और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना, नई तकनीकों का विकास करना और भविष्य के लिए कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मिशन 1.0 ने इस जटिल उद्योग की मजबूत नींव रखी है।
3: We have been able to achieve that in the first.
4: हम अपने सेमीकंडक्टर मिशन के पहले चरण में ये हासिल कर पाए हैं। 75,000 से ज्यादा इंजीनियर इस क्षेत्र में प्रशिक्षित हो चुके हैं। 300 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज छात्रों को चिप डिजाइन करना सिखा रही हैं और भारत में 2 नैनोमीटर चिप्स डिजाइन की जा रही हैं, जो दुनिया की सबसे एडवांस चिप्स हैं। इनमें एनवीडिया और इंटेल की चिप्स भी शामिल हैं और ये सभी अब भारत में ही डिजाइन की जाती हैं।
3: They are all designed in India now.
2: वहीं भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 ने निजी कंपनियों को अंतरिक्ष क्षेत्र में पूरी तरह काम करने की अनुमति दी है। अब निजी संस्थाएं रॉकेट लॉन्च, उपग्रह निर्माण और संचालन, डेटा संग्रह और वितरण तथा ग्राउंड स्टेशन जैसी गतिविधियां कर सकती हैं। इस नीति के बाद भारत में स्पेस स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में केवल 1 से बढ़कर 400 से अधिक हो गई है। इससे देश की निजी अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई गति मिली है। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $8 अरब से अधिक की है और अगले 10 वर्षों में इसके 4 से 5 गुना बढ़कर 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में अनिल प्रकाश, स्पेस इंडस्ट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महानिदेशक ने बताया कि भारत में अब 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप्स हैं।
5: नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्पेस सेक्टर रिफॉर्म, स्पेस की स्थापना और प्राइवेट पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली नीतियों ने एक नई क्रांति की शुरुआत की है। आज भारत में 400 से अधिक स्पेस टेक स्टार्टअप कार्यरत हैं, जो सैटेलाइट, लॉन्च व्हीकल, अर्थ ऑब्जर्वेशन और डाटा सर्विस जैसे क्षेत्रों में कर रहे।
2: सेमीकंडक्टर मिशन की उपलब्धियों और तेजी से बढ़ती निजी अंतरिक्ष क्षेत्र के माध्यम से भारत विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। और अब खेल खबरें। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
6: धन्यवाद विशाल। टेलीग्राम पर केंद्र सरकार की रोक पर दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है टेलीग्राम पर प्रतिबंध सही। फुटपाथ पर पैदल चलना लोगों का मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय, दैनिक ट्रिब्यून सहित कई अखबारों में है। इस खबर पर नवभारत टाइम्स ने पहला हक शीर्षक से संपादकीय में लिखा है सुरक्षित फुटपाथ केवल सड़क सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा नहीं, ये पर्यावरण और लोगों की सेहत से भी जुड़ा है। पाकिस्तान अपने ही भस्मासुरों का शिकार, आतंकियों की है खुली पनाहगाह, संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अनुपमा सिंह का ये बयान अमर उजाला में है।
0: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल के हुगली से पीएम किसान योजना की 23वीं किस्त जारी करेंगे। वरिष्ठ भारतीय नौकरशाह विवेक अग्रवाल वित्तीय कार्रवाई कार्यबल के उपाध्यक्ष नियुक्त। भारत ने आतंकवाद वित्त पोषण से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल। और सेबी ने मृत निवेशकों के शेयर उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित करने की प्रक्रिया आसान बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम नरेश मागो। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू इनॉग्रेट एंड ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर्थ ओवर 47,000 करोड़ रुपीज इन ओडिशाज मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट टुडे। Prime Minister Modi to release 23rd installment of the PM Kisan to over 9 crore farmers from Hooghly in West Bengal. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal appointed as Vice President of Financial Action Task Force FATF. New Delhi reiterates its commitment to combat terror financing. NTA to conduct nationwide mock drill today ahead of NEET UG re-examination scheduled for tomorrow. SEBI clears channel for easier transfer of shares to legal heirs of deceased investors. And in men's cricket, India to take on Afghanistan in third and final ODI of the series in Chennai this afternoon. In a rare confluence of constitutional leadership and developmental vision, Prime Minister Narendra Modi is visiting Odisha this morning, where he will join President Draupadi Murmu in her home district of Mayurbhanj. The visit coincides with the President's 68th birthday and the celebrations marking 2 years of the Odisha government. Our correspondent reports from Rairangpur.
8: In a rare and significant engagement, the President and the Prime Minister will jointly offer prayers at the sacred Santhali Jahera and Ho Jahera groves and visit local educational and skill development institutions, underscoring the nation's commitment to the empowerment of tribal communities. Later, the two leaders will participate in a grand public program at Rairangpur, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led Odisha government. Development projects worth more than 47,000 crore rupees will be inaugurated by the Prime Minister and foundation stones laid across key sectors. Sectors including energy, transportation, health, education, irrigation and industrial infrastructure. President Murmu and Prime Minister Modi are also scheduled to address a massive public gathering. Prakash Das from Rairangpur, Akashwani News.
7: Prime Minister Modi has extended greetings to President Murmu on her birthday. Mr. Modi said that the President's journey marked by courage, simplicity, humility and an unwavering commitment to public service that continues to inspire people across the country. Later in the day, Prime Minister Modi will release over 18,800 crore rupees 880 crore rupees to the bank accounts of 9 crore 44 lakh farmers nationwide under the PM Kisan scheme from Hooghly in West Bengal. This also includes over 900 crore rupees to the accounts of more than 45 lakh farmers of West Bengal. We have more details on the Prime Minister's visit from our correspondent.
9: Prime Minister Narendra Modi is arriving in West Bengal today on a 2-day visit for the first time since the BJP formed the government in the state. During his stay, he will attend the West Bengal Day celebrations in Tarakeshwar in Hooghly, lead the International Yoga Day program in Kolkata's Red Road, and dedicate three indigenously built warships, INS Dunagiri, INS Sanshodhak, and INS Agrai, to the nation. He will also inaugurate and lay foundation stones for several key projects. These include railway initiatives worth nearly rupees 590 crore, a new 300-bed railway hospital in Howrah, and a rail overbridge in East Midnapore. He will also launch 49 rural road projects under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, strengthening connectivity across more than 315 kilometers. In agriculture, Mr. Modi will formally introduce the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana in West Bengal, providing insurance coverage to nearly 50 lakh farmers. He will also unveil new initiatives under the Digital Agriculture Mission, including AgriStack and the Dhanodhan Krishi Yojana. The Prime Minister's program extends to fisheries and animal husbandry with projects such as modern fishing harbour at Fraserganj, a fish market in Birbhum, and Eastern India's first goat semen research laboratory in Nodia.
10: Sandeep Dashgupta, Akashbani News, Kolkata.
7: Prime Minister Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Banga Divas. Mr. Modi said this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. Senior Indian bureaucrat Vivek Agrawal has been appointed as the next vice president of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agrawal, currently serving as secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agrawal's selection a major win for India. In a social media post, the ministry said, "The appointment reinforces India's commitment to combating terrorism financing and illicit financial networks." The National Testing Agency, NTA, will conduct a nationwide mock drill today ahead of the NEET UG re-examination 2026. It is part of the preparations to ensure smooth, secure and transparent conduct of the examination. More from our correspondent.
11: The National Testing Agency has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled tomorrow. In a statement, NTA said that exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. It includes CCTV surveillance, Aadhaar-based biometric verification and GPS-enabled vehicles with police escort for movement of examination materials. The re-examination will be conducted from 2 p.m. to 5:15 p.m. in pen and paper mode. Shivang Mishra, Akashwani News, Delhi.
7: The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. SEBI Chairman Tohin Kanta Pandey shared the details after the crucial board meeting.
12: The key decisions relates to simplifying and standardizing the framework for easier transmission of securities to legal heirs and claimants of deceased investors. Now we are creating a new category of quick transmission processing for small value claims. Simplified documentation, which already exists, the limit is being increased from 5 lakh to 10 lakh for physical holdings per listed company and from 15 lakhs to 30 lakh for dematerialized holdings per beneficial owner.
7: This is Akashvani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. India has undergone

0: दिल्ली और शिलांग से अभी आप देश और प्रगति का अहम समाचार सुन रहे थे। समाचारों के इस सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है हमारे अगले बेहद इन्फॉर्मेटिव संगीतमय और आपके सबसे चहेते प्रोग्राम का। शुरू हो चुका है आपका अपना प्रोग्राम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

आकाशवाणी जानकर अरुण एफएम पर आप सभी श्रोताओं का मेरा बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बिल्कुल

जिन्हें अपना घर, अपनी जमीन और अपना सब कुछ छोड़कर किसी दूसरे मुल्क या जगह पर शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज के इस हेलो ईटानगर शो में हम इसी विषय पर बिल्कुल विस्तार से बात करेंगे, इसके इतिहास जानेंगे और इसके मायने समझेंगे। लेकिन ज्ञान और जानकारी के इस गहरे सफर पर निकलने से पहले चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं संगीत का एक बेहद खूबसूरत झोंके के साथ। कीजिए एंजॉय हमारा ये पहला ट्रैक।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर आपके अपने स्टेशन आकाशवाणी ईटानगर पर। गाने के बाद आइए आप सीधे चलते हैं हमारे आज के एजुकेशनल टॉपिक पर और गहराई से जानते हैं वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रेफ्यूजी यानी शरणार्थी कौन होते हैं। यूनाइटेड नेशन के मुताबिक रेफ्यूजी वो व्यक्ति है जो युद्ध, हिंसा, उत्पीड़न या किसी ऐसी आफत की वजह से अपने देश से भागने पर मजबूर हो जाते हैं, जहां उसकी जान को खतरा हो। वो जाकर भी अपने घर वापस नहीं लौट सकते क्योंकि वहां उसकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। अब बात करते हैं कि इस दिन की शुरुआत कब और कैसे हुई। पहली बार वर्ल्ड रेफ्यूजी डे ऑफिशियली 20 जून 2001 को मनाया गया। ये साल इसलिए खास था क्योंकि ये 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन की 50th एनिवर्सरी थी। इससे पहले इस दिन को अलग अलग देशों में अफ्रीका रेफ्यूजी डे के रूप में मनाया जाता था, लेकिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने दिसंबर 2000 में एक रेजोल्यूशन पास किया और 20 जून को इंटरनेशनल लेवल पर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे घोषित कर दिया। ये दिन क्यों मनाया जाता है? इस दिन को मनाने के तीन मुख्य मकसद है। पूरी दुनिया का ध्यान उन लोगों की तरफ खींचा जो बिना किसी गलती के रेफ्यूजी बन गए। लोगों में उनके प्रति इज्जत और हमदर्दी जगाना, क्योंकि उन्होंने अपना सब कुछ खोया है लेकिन अपना हौसला नहीं। तीसरा है दुनिया भर की सरकारों और आम जनता को उनकी बेसिक जरूरतों जैसे खाना, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए आगे आने के लिए प्रेरित करना। दोस्तों, जब कोई अपना घर छोड़ता है तो वो सिर्फ एक इमारत नहीं छोड़ता बल्कि अपनी पहचान, अपनी यादें और अपने इतिहास छोड़ देता है। इस विषय पर अभी हमें और भी बातें करनी हैं, लेकिन आइए पहले लेते हैं हमारा दूसरा म्यूजिकल ब्रेक। सुनिए ये गाना और मैं अभी हाजिर होती हूँ इसके आगे के महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।

दोस्तों आइए अब इस एजुकेशनल सेगमेंट की आखिरी हिस्से में बात करते हैं कुछ अहम डाटा की और हमारे देश भारत के नजरिए की। अगर हम ग्लोबल स्टैटिस्टिक पर नजर डालें तो UNHCR यानी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज के हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय दुनिया भर में 120 मिलियन से भी ज्यादा लोग जबरदस्ती डिस्प्लेस यानी विस्थापित किए गए हैं। इनमें से लगभग आधी संख्या मासूम बच्चों की है जिनकी पढ़ाई और भविष्य बिल्कुल आधार में लटका हुआ है। सीरिया, अफगानिस्तान, साउथ सूडान और यूक्रेन जैसे देशों से सबसे ज्यादा लोग शरणार्थी बने पर मजबूर हुए हैं। जब बात शरणार्थियों को पना देने की आती है तो भारत का इतिहास बेहद

गौरवशाली रहा है। हमने हमेशा वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार है कि सिद्धत को जिया है। भारत ने बिना किसी भेदभाव के अलग अलग समय पर टिबेटियंस, चकमा और हाजोंग कम्युनिटीज, श्रीलंकन तमिल्स और अफगान रेफ्यूजीज को अपने यहां पना दी है और उन्हें सुरक्षित माहौल दिया है। हमने हमेशा दिखाया है कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दोस्तों, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे हमें याद दिलाता है कि हमारे पास जो छत है, जो आजादी है, वो कितनी बड़ी नेमत है। कल को किसी के साथ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, इसलिए हमें उनकी प्रति निर्दयी नहीं बल्कि मददगार बनना चाहिए। तो दोस्तों, हेलो ईटानगर में आज बस इतना ही। यह आकाशवाणी ईटानगर का रोन FM 103.1 MHz है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।

0: आज उड़ीसा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल के दौरे में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने आज पश्चिम बंग दिवस पर पश्चिम बंगाल के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
2: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीके को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। आकाशवाणी की विशेष श्रृंखला पीपल्स पद्म के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता और उद्यमी SKM मेलानंदन पर एक विशेष कार्यक्रम। श्री मेलानंदन को उनके उत्कृष्ट सामाजिक योगदान और उद्यमिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये विशेष कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड से प्रसारित किया जाएगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत दर्ज की। ग्रुप सी के एक मैच में आज मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। इस समय ग्रुप डी के एक मैच में तुर्की का सामना पैराग्वे से हो रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुभद्रा रामचंद्रन। Prime Minister Narendra Modi will be on a visit to Odisha and West Bengal from today. In Odisha, he will join President Draupadi Murmu at Pahadpur village in Mayurbhanj district on the occasion of the President's 68th birthday. The President and Prime Minister will visit Pahadpur village in Mayurbhanj district and offer prayers at sacred groves, Santhali Jahera and Ho Jahera, Skill Center and Pahadpur school. Later, they will participate in a program at Rai Rangpur in Mayurbhanj district, marking the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi-led state government. During his two-day visit to West Bengal, Prime Minister Modi will participate in Pashchim Banga Divas West Bengal Day celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district today. He is also scheduled to launch, dedicate to the nation and lay the foundation stone of multiple development projects in West Bengal. Mr. Modi will release the 23rd installment of the Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi, PM Kisan. Prime Minister Narendra Modi has extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Pashchim Banga Divas today. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce and social reform. The Prime Minister said that this day holds special significance in West Bengal's history. Senior Indian bureaucrat Vivek Agarwal has been appointed as the next Vice President of the Financial Action Task Force, FATF, for the 2026-27 term. He will succeed Giles Thompson of the United Kingdom. Mr. Agarwal, currently serving as Secretary in the Ministry of Culture, earlier headed the Indian delegation to the FATF and played a key role in India's engagement with the global anti-money laundering and counter-terror financing watchdog. The Ministry of External Affairs has termed Mr. Agarwal's election a major win for India. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting of held in Mumbai yesterday, the SEBI board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The decision was taken to introduce a new quick transmission processing QTP category for small value claims to enable faster processing with reduced documentation. As part of our series, People's Padma and Akashvani, we bring you a special program on SKM Mailanandan, a social worker and entrepreneur who will be honored with the Padma Bhushan. Here are snippets from the program dubbed in English.
4: I established the Tamil Nadu Poultry Farmers Association and served as its head. In addition, we started Yoga for Youth Empowerment for local schools, which has reached about 15 lakh children. I have been running these programs for over 3 decades. We provide 3 meals a day to the elderly along with free medical treatment. We also provide free education to children. Today, people are doing well in business, but when it comes to social service, they hesitate. You need a good heart.
3: To listen to the program, tune in to 100.1 Akashwani Girl this morning at 9:10 a.m. You can also listen to it on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. The National Testing Agency, NTA, has said that it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026 re-examination, which is scheduled for tomorrow. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.H. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the 3-match series. Meanwhile, a fast bowler, Harshit Rana, has joined the Indian squad for the final ODI after recovering from a knee injury. And that is the end of this news bulletin.

दोस्तों, दिल्ली से अभी आप देश विदेश के सभी अहम और विस्तार समाचार सुन रहे थे। समाचारों के इस सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है बिल्कुल तारोताजा हो जाने का, क्योंकि अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है राज्य के सबसे चर्चित चटपटे और मजेदार शो की तरफ। जी हां, शुरू हो चुका है आपका अपना कार्यक्रम फिल्मी गपशप।

दोस्तों बॉलीवुड की मसलेदार दुनिया में खोने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी इस फिल्म गपशप शो में हम बात करते हैं टिंसल टाउन की हर छोटी बड़ी खबर। आज है तारीख 20 जून 2026 और इस साल का ये जून का महीना बॉलीवुड के लिए बिल्कुल फायर और हंगामादार साबित हो रहा है। बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड से लेकर सेट्स पर चल रही ताजा गॉसिप तक सब कुछ आज आपको इसी शो में मिलेगा। तो अगर आप भी हैं एक सच्चे सिनेफाइल तो सीट बेल्ट बांध लीजिए। चलिए इस फिल्म सफर की शुरुआत करते हैं इस महीने की सबसे बड़ी बॉलीवुड अपडेट से। इस समय पूरी बी टाउन और सोशल मीडिया पर अगर किसी एक फिल्म का ट्रेलर की चर्चा सबसे ज्यादा है तो वो है वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स की आने वाली मेगा ट्रेलर अल्फा।

कल ही इसका धमाकेदार ट्रेलर आउट हुआ है और फैंस हैरान है आलिया भट्ट और शार्वरी के लीथल एक्शन अवतार को देखकर। ट्रेलर के एक सीन में ध्यान से देखने पर एक छोटी सी सरप्राइज झलक भी टीजर की गई है, जिसे लेकर फैंस क्रेजी हो गए हैं। लगता है इस बार स्पाई यूनिवर्स का धमाका कुछ अलग ही लेवल पर होने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है? लेकिन दोस्तों, बातें तो अभी बहुत सारी करनी है, चाहे बात सुपरस्टार शाहरुख खान की आने वाली एक्शन फिल्म किंग की हो या फिर हाल ही में आई बड़ी फिल्मों के बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स की। इन सभी खबरों पर से पर्दा उठाएंगे, लेकिन पहले इस सुहानी और चटपटी सुबह को थोड़ा म्यूजिकल बनाते हैं। इस साल के कुछ इस गीत के साथ

पहले धमाकेदार गाने के बाद अब बात करते हैं उन फिल्मों की जो आने वाले महीनों में बड़े पर्दे पर आग लगाने के लिए तैयार है। सबसे पहले बात करते हैं मेगा स्टार सलमान खान की। सिकंदर के बाद अब सलमान खान अपने करियर की सबसे बड़ी पेट्रियोटिक वॉर ड्रामा फिल्म मातृभूमि में वॉर रेस्ट इन पीस लेकर आ रहे हैं, जो इसी साल 14 अगस्त 2026 को रिलीज होने के लिए शेड्यूल है। इस फिल्म को अपूर्वा लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गलवान वैली के रियल हीरोज पर बेस्ड एक बेहद इमोशनल और हाई स्केल एक्शन फिल्म होने वाली है। यही नहीं दोस्तों, ताजा खबर ये भी है कि सलमान खान और फरहान अख्तर के बीच एक बहुत बड़े टू पार्ट हिस्टोरिकल एपिक ड्रामा को लेकर रेगुलर मीटिंग्स चल रही है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एक्सल एंटरटेनमेंट के साथ सलमान का ये पहला सबसे बड़ा कोलैबोरेशन होगा। वहीं दूसरी तरफ साउथ और बॉलीवुड का कोलैब अब अगले दौर में पहुंच चुका है। एनटीआर जूनियर की अगली बड़ी फिल्म ड्रैगन को लेकर भी प्री प्रोडक्शन काम इस समय काफी तेजी से चल रहा है और फैंस अभी से उनके नए अवतार को देखने के लिए एक्साइटेड है। चलिए इस बीटाउन एक्साइटमेंट के बीच सुनते हैं आज का दूसरा गाना।

वेलकम बैक फिल्मी दीवानों, आप जुड़े हैं फिल्मी गपशप के साथ। आइए अब सीधे रुक करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी मूवी रिलीजेस और उनकी ओटीटी रिव्यूज की तरफ, क्योंकि जाने जून का ये तीसरा हफ्ता थिएटर्स और ओटीटी दोनों पर जबरदस्त एंटरटेनमेंट लेकर आया है। बड़े पर्दे पर जहां कुछ नए कंसेप्ट और एक्सपेरिमेंटल फिल्म्स ने दस्तक दी है, वही ट्रेड एनालिस्ट का कहना है कि इस साल ऑडियंस अब माइंडलेस कमर्शियल सिनेमा से ज्यादा कंटेंट ड्रिवन स्टोरीज को पसंद कर रही हैं। हालांकि कुछ मल्टी स्टारर एंटरटेनमेंट्स अगले कुछ हफ्तों में लाइनअप है, लेकिन तब तक पुरानी हिट फिल्में अभी भी सिंगल स्क्रीन पर अपना दबदबा बनाए हुए हैं। अगर बात करें रिव्यूज की तो इस हफ्ते रिलीज हुई है एक लाइट हार्टेड रोम कॉम्स को क्रिटिक्स ने मिक्स रिस्पॉन्स दिया है, लेकिन फैमिली ऑडियंस के बीच उन्हें 3 out of 5 स्टार्स तक का ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस हसीन माहौल के बीच चलिए थोड़ा रोमांटिक मूड बनाते हैं और सुनते हैं आज का ये तीसरा गाना। कहीं मत जाइएगा, अभी बहुत सी खबरें बाकी हैं।

दोस्तों भूल भुलैया 3 के सुपर सक्सेस और पिछले साल के हिट्स के बाद कार्तिक आर्यन इस समय प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स के पहले पसंद बने हुए हैं। कार्तिक की नई रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग इस समय पिक पर चल रही है और उनका ये बदला हुआ इंटेंस अवतार उनके फैंस को काफी पसंद आ रहा है। फिल्म का म्यूजिक अभी से ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर टॉप पर ट्रेंड कर रहा है और यूथ के बीच इसकी जबरदस्त डिस्कशन हो रही है। वहीं यंग ब्रिगेड में शार्वरी का ग्राफ भी काफी तेजी से ऊपर जा रहा है। अल्फा के ट्रेलर में उनका रोज स्टंट्स करना और आलिया भट्ट की साथ उनकी ऑन स्क्रीन एनर्जी लोगों को काफी इम्प्रेस कर रही है। तो दोस्तों इस यंग एनर्जी के साथ आइए एंजॉय करते हैं हमारा ये दूसरा ट्रैक।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pace Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं फिल्मी कब्जा सिर्फ आकाशवाणी टानगर अरुण एफएम पर। अब जहां बॉलीवुड हो वहां कंट्रोवर्सीज ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। चलिए बात करते हैं उन खबरों की जिन्होंने सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है। इस समय बॉलीवुड के कई छोटी और बड़ी म्यूजिक कंपनीज के बीच एक नया विवाद छिड़ गया है। कुछ बड़े सिंगर्स ने म्यूजिक डायरेक्टर्स पर यह आरोप लगाया है कि उनके गानों को उनकी इजाजत के बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए रिक्रिएट किया जा रहा है और उनकी वॉइस क्लोन का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस मुद्दे ने अब लीगल रूप ले लिया है और इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्रोड्यूसर इस पर एक नया कॉपीराइट रूल बनाने की मांग कर रहा है। एक और बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है जहां एक आने वाली बिग बजट एक्शन फ्रेंचाइज के सेट से खबर है कि लीड सुपरस्टार और उनके डायरेक्टर के बीच क्रिएटिव डिफरेंसेस इतने बढ़ गए हैं कि शूटिंग को कुछ दिनों के लिए होल्ड पर रखना पड़ा है। बजट ओवररन्स और स्क्रिप्ट रीराइट्स को लेकर दोनों के बीच चल रही ये बहस इस समय हर फिल्मी पोर्टल की हेडलाइन बनी हुई है। चलिए दिमाग को थोड़ा ठंडा करते हैं और सुनते हैं आज का ये अगला गीत।

दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका फिल्म के गपशप में। आइए बात करते हैं डिजिटल दुनिया यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की, क्योंकि इस वीकेंड अगर आप घर बैठकर बिंज वॉच करना चाहते हैं तो ऑप्शंस की बौछार हो चुकी है। नेटफ्लिक्स और प्राइम अमेजन पर चल रही होड़ के बीच इस बार काफी इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइन्स क्लियर हुई है। नेटफ्लिक्स पर अगले महीने के शुरुआत में यानी 2 जुलाई 2024 को मिथिला पलकर और संदीप किशन की एक बहुत ही यूनिक कॉमेडी सीरीज सुपर सुब्बू आने वाली है, जिसमें एक रूकी सेक्स एजुकेशन टीचर की हसीन और ऑकवर्ड कहानी दिखाया गया है। इसका ट्रेलर इंटरनेट पर काफी ट्रेंड कर रहा है। वहीं जियो सिनेमा पर भी एक डार्क क्राइम ट्रेलर सीरीज रिलीज हुई है, जिसका स्क्रीन प्ले इतना टाइट है कि आप एक बार बैठेंगे तो सारे एपिसोड एक साथ खत्म करके ही उठेंगे। तो इस डिजिटल दोस्त के बाद चलिए सुनते हैं ये अगला गीत।

दोस्तों, अब आते हैं शो के उस सेगमेंट में जिसका आप सबको ज्यादा इंतजार रहता है, यानी बी टाउन की कॉरिडोर से आने वाली गर्मा गर्म गॉसिप्स और अफवाहें। बॉलीवुड की एक यंग और सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेस और एक हैंडसम एक्शन स्टार को हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया। अफवाह है कि दोनों एक सीक्रेट आइलैंड पर अपना वेकेशन मनाने गए हैं। हालांकि दोनों ने मीडिया के सामने अपने रिलेशनशिप को लेकर हमेशा चुप रही है, लेकिन उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक जैसी लोकेशन की फोटोज ने फैंस को सब कुछ साफ कर दिया है। एक और चर्चा गर्म है कि बी टाउन की एक मशहूर जोड़ी के बीच सब कुछ ठीक है चल रहा है। दोनों ने हाल ही में एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो किया, जिसके बाद से ही ब्रेकअप की खबरें हर जगह उड़ रही है। चलिए इन सभी अफवाहों के बीच लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं आज का ये आखिरी गाना।

0: दोस्तों, जाते जाते एक और बड़ी खबर आपको दे दें। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह जो हाल ही में पेरेंट्स बने हैं, उनके घर की खुशियों के बीच रणवीर सिंह ने एक बहुत बड़ा साउथ इंडियन डायरेक्टर के पैन इंडिया फिल्म साइन कर ली है। इस फिल्म का बजट लगभग 400 करोड़ बताया जा रहा है और ये एक माइथोलॉजिकल साईफाई जोनरा की फिल्म होने वाली है। ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट इसी महीने के अंत तक आने की उम्मीद है, जिसे लेकर फैंस काफी एक्साइटेड है। तो दोस्तों, आज फिल्मी गपशप में हमने बड़े पर्दे से लेकर ओटीटी नए ट्रेलर्स और गॉसिप तक हर एक करंट और ऑनगोइंग लाइफ अपडेट आप तक पहुंचाई है। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये फिल्मी सफर बेहद मजेदार लगा होगा। तो ये आकाशवाणी ईटानगर कारुण्य एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
2: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके तहत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रूपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचकल करंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचकल करंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री इचकल करंजी के कल्पंगना अवडे टेक्सटाइल पार्क ग्राउंड में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एक रिपोर्ट।
3: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा है यह परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों के लिए आयोजित की जाएगी। एजेंसी ने बताया कि 2 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को तैनात किया गया है, जिनमें पर्यवेक्षकों, कोऑर्डिनेटर, पुलिस बल और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हैं। एनटी ने कहा कि निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली सुरक्षा व्यवस्था की गई है। परीक्षा कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक पेन और पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। शिवांग शाह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने मृत निवेशकों के शेयरों के आसानी से हस्तांतरण के उद्देश्य से कानूनी उत्तराधिकारी और दावेदारों को प्रतिभूति अंतरित किए जाने के तरीकों को सरल बनाया है। कल मुंबई में बोर्ड की 214वीं बैठक में सेबी ने बाजार क्षमता बढ़ाने, अनुपालन में आसानी और नियामक व्यवस्था में मजबूती के लिए कई सुधारों को मंजूरी दी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कल सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा की। इस दौरान टीबी मुक्त भारत अभियान की प्रगति का आकलन किया गया और आगे की रणनीति तैयार की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारत 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुका है। तेज गेंदबाज हर्षित राणा घुटने की चोट से उभरने के बाद अंतिम एक दिवसीय मैच के लिए टीम में है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर अपनी पहली शानदार जीत

0: दिल्ली से अभी आप देश विदेश के सभी अहम और विस्तार समाचार सुन रहे थे। समाचारों के इस सिलसिले के बाद अब वक्त हो चला है आपकी अपनी पसंद का। अब घड़ी की सुई इशारा कर रही है इस पूरे राज्य के सबसे चहेते और आखिरी प्रोग्राम की तरफ। जी हां, शुरू हो चुका है आपका अपना सबसे खास शो रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: चलिए शो का आगाज करते हैं कल के कुछ पेंडिंग बचे हुए रिक्वेस्ट के साथ, जो कल समय की कमी की वजह से छूट गई थी। हमारे एक बेहद प्यारी और लगातार सुनने वाली श्रोता है ज्योति सुरेन जी, हेलम असम से हमसे जुड़ी हैं। उनका कल का रिक्वेस्ट पेंडिंग था और उन्होंने फरमाइश की है इंडियन आइडल फेम अभिजीत सावन का एक बेहद खूबसूरत और मधुर ट्रैक। तो ज्योति जी, आपकी फरमाइश पर पेश है ये बेहद प्यारा गाना, क्या तुझे पता है।

दोस्तों, पहले के नए और हसीन नॉस्टैल्जिक पॉप ट्रैक के बाद अब रुख करते हैं हमारी अगली फरमाइश की तरफ, जो आई है बॉर्डर के उस पार से। जी हाँ, गोहपुर बुखारी से हमारी एक और रेगुलर श्रोता आरुष प्रधान ने हमें लिखा है। उन्होंने जीएन विक्रम और एम एच एक्शन की मशहूर फिल्म आई से ए आर रहमान का बनाया हुआ एक बेहद इमोशनल और दिल को छू लेने वाला गाना रिक्वेस्ट किया है। आरुष जी की फरमाइश पर और उनके साथ साथ उनके पूरे परिवार के लिए पेश है ऐश किंग और सुनिधि चौहान की आवाज में तुम तोड़ो ना।

चलिए दोस्तों, अब दूर दराज के इलाकों के सीधे से लौटते हैं हमारी अपनी कैपिटल सिटी की तरफ। हमारी अगली रिक्वेस्ट आई है हमारे बिल्कुल पास से, यानी नाहरलगुन से, और इसे भेजा है हमारे डेली लिसनर लोकीनाथ रोंगंग ने। लोकीनाथ जी हमेशा हमारे शो के साथ जुड़े रहते हैं और आज उन्होंने पुराने दिनों की यादों को ताजा करने के लिए एक बेहद एनर्जेटिक और रोमांटिक ट्रैक चुना है। उनकी डिमांड पर बजाने जा रहे हैं ब्लॉकबस्टर फिल्म का एवर ग्रीन ट्रैक जान ओ मेरी जान मेरी जान। तो लोकीनाथ जी और पूरे नाहरलगुन के श्रोताओं, ये गीत आप सबके लिए।

0: वेलकम बैक श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी टानागर अरुण एफएम और सिलसिला चल रहा है आपकी अपनी फरमाइशों का। अब जो अगली रिक्वेस्ट हमारे पास आई है ये भी कल की है, वो फिर से असम से एक छोटे से खूबसूरत इलाके से हैं। बालीजूरी असम से हमारे डेली लिसनर कविता ने हमें बहुत ही प्यार से संदेश भेजा है। कविता जी ने लिखा है, उन्हें 90s का जमाना और उस दौर के संगीत बेहद पसंद है। उन्होंने किसी एक खास गाने के नाम तो नहीं लिखा, लेकिन उनकी फरमाइश है कि दीवाना मूवी से उनके लिए कोई भी एक बेहद सुनहरा गाना बजा दीजिए। तो कविता जी, आपकी फरमाइश पर पेश है दीवाना का सबसे बेहतरीन और मेलोडियस ट्रैक।
1: हमारे चैनल को सब्सक्राइब

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका रेडियो ऑन डिमांड में. श्रोताओं, हमारे पास और भी एक से बढ़कर एक क्लासिक और सुनहरे गानों की बौछार हो रही है. इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब वक्त हो चला है एक कल की और फरमाइश का, जो सीधे हमारे एक रेगुलर लिसनर नूरी की तरफ से आई है. और उन्होंने जो गाना रिक्वेस्ट किया है वो उनके नाम से ही मिलती जुलती फिल्म का है. जी हाँ, नूरी जी ने फरमाइश की है आइकॉनिक फिल्म नूरी से, जो जिसे स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने अपनी आवाज से अमर कर दिया था. कायम साहब का संगीत और लता जी की आवाज चोरी चोरी कोई आई. नूरी, ये गाना खास आपके लिए और देश के सभी रेट्रो लवर्स के लिए जो हमें सुन रहे हैं.

हमारे आज के ताजा फरमाइशों का सिलसिला। आज का पहला नया मैसेज आए हैं बुहकत आसाम से, और इसे भेजा है हमारे डेली लिस्नर हर्षित गोस्वामी जी ने। हर्षित जी ने रणबीर कपूर की फिल्म चक्का जासूस से एक बेहद डीप और सोल स्टेरिंग ट्रैक चुना है जिसे तुषार जोशी ने गाया है। तो हर्षित जी, आपके इस सब्र के लिए एक बड़ा सा थैंक यू, और आपकी फरमाइश पर पेश है ये बेहद प्यारा गाना मुसाफिर।

श्रोताओ, संगीत जब किसी रास्ते के प्यार को बयान करता है तो उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। और हमारी अगली फरमाइश कुछ ऐसी ही बिल्कुल दिल को छू लेने वाली है। हमें लिखा है हमारी बेहद प्यारी डेली लिसनर गुमेमई बागरा जी ने, जो हिगी बागरा से हमसे रोज जुड़ते हैं। उन्होंने न सिर्फ एक बेहद सुनहरा और एवरग्रीन रोमांटिक गाना रिक्वेस्ट किया है, बल्कि इस गाने को पूरे दिल से डेडिकेट किया है अपने प्यारे पति झुमकर बागरा जी को। झुमकर जी, आप सच में बहुत लकी है गुमे जी की इस प्यारे से मोहब्बत और उनकी इस ब्यूटीफुल चॉइस को पूरे बागरा परिवार के लिए एयरवेव्स पर उतार रहे हैं हम। पेश है फिल्म साजन से कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का गाया हुआ लेजेंडरी ट्रैक बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।

श्रोताओं, जाने से पहले एक जरूरी बात। आज समय की थोड़ी कमी की वजह से हमारी जो बी पेंडिंग फरमाइशें छूट गई है उनके लिए मैं दिल से माफी मांगती हूं, लेकिन मेरा वादा है कल जब हम दोबारा मिलेंगे तो आपके उन सभी बचे हुए गानों को मैं सबसे पहले जरूर प्ले करूंगी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तांगजांग और तकनीकी अभियंता तनातुंग। दोस्तों, कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के सभी के साथ यूं ही जारी रहेगा। अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कविता के साथ, तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपनी आरजे अजू को दीजिए इजाजत। ये आकाशवाणी टानागर का अरुण एफएम 103.1 MHz है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार। दोस्तों, जाने से पहले ये एक बेहद खूबसूरत सा गीत जिसे नाहरलगुन से कोई अननोन पर्सन ने रिक्वेस्ट किया है। वे कह रहे हैं कि अपनी माँ को बहुत मिस कर रहे हैं, तो मैं ये गाना आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री आज ओडिशा में मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके 68वें जन्मदिन पर भेंट करेंगे।
1: राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर पवित्र संथाली जोहरा और हो जोहरा स्थलों पर पूजा अर्चना करेंगे और स्थानीय शिक्षण और कौशल विकास संस्थानों का दौरा करेंगे। इससे आदिवासी समुदायों के सशक्तिकरण के प्रति देश की प्रतिबद्धता जाहिर होगी। इसके बाद दोनों नेता रायरंगपुर में एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और ऊर्जा, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और औद्योगिक बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायरंगपुर से प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
0: पश्चिम बंगाल में आज प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। वे राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति मुर्मू रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जाएंगी और 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। गृहमंत्री इचलकरंजी में किसानों की सभा को भी संबोधित करेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम 2-0 की बढ़त के साथ पहले ही श्रृंखला अपने नाम कर चुकी है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में भी तेज वर्षा की संभावना है। विश्वभर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Naresh Mago.

103 दशमलव 1 मेगाहर्ट्ज़ से। श्रोता दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपका आज का हमारा पहली प्रसारण सभा का सफर सुहाना रहा होगा। और आइए आगे हमारी दूसरी प्रसारण सभा की ओर चलते हैं। और इस दूसरी प्रसारण सभा के साथ हैं प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता तिम और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और मैं आपकी रेडियो साथी कविता आप सभी श्रोताओं का इस दूसरी प्रसारण सभा में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। श्रोताओं, हमारे दूसरी प्रसारण के इस पहले प्रोग्राम फिल्मी लहर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रोता दोस्तों, मन ऐसा पवित्र जगह है जहां आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज प्रवेश नहीं कर सकती। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम फिल्मी लहर और सुनते हैं फिल्मी लहर का ये गाना, पहला गाना फिल्म गब्बर इज बैक से। आवाज है अरिजीत सिंह एवं पलक मुच्छर के।

दोस्तों, अगर आप सिचुएशन को बदल नहीं सकते तो अपनी मन की स्थिति बदल कर देख लीजिए, सब कुछ बदल जाएगा। जिन्होंने हमें अभी अभी ट्यून किया है उन्हें हम बता दें, आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में, और हमारे साथ आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्मी गाने प्रोग्राम फिल्मी लहर में। और आइए अब सुनते हैं श्रेया घोषाल अन्वेषा की आवाज में रांझना फिल्म का ये गाना।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए थे प्रोग्राम फिल्मी लहर में और आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मेलोडीज़।

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: श्रोता दोस्तों, आपने सुना वेस्टर्न मेलोडीज का ये प्रोग्राम और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज।
2: दिल से दिल तक बात पहुंची।
3: मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति आज अपना 68वां जन्मदिन मना रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पहाड़पुर गांव पहुंचेंगे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा करेंगी। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े जनसभा कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वरिष्ठ नौकरशाह विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैर कानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित करेगा। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारी पुख्ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। विदेश मंत्रालय की तथ्य जांच इकाई ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन दावों को खारिज किया है जिनमें कहा गया था कि कुछ मीम्स को लेकर विरोध दर्ज कराने के लिए चीन ने भारत के राजदूत को तलब किया था। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये दावा पूरी तरह से झूठा और निराधार है। अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इजराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बाद में दोनों पक्षों के बीच युद्ध विराम पर सहमति बनी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्व भर में कल 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। संस्कृति मंत्रालय भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और योग परंपराओं को दर्शाते हुए देश भर में 100 स्थानों पर विशेष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल मध्य प्रदेश के जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर चेन्नई के एम ए चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. President Draupadi Murmu reached at her village Paharpur in Odisha's Mayurbhanj district today to celebrate her 68th birthday amid a warm welcome from local residents. Odisha Governor Haribabu Kambhambati and Chief Minister Mohan Charan Manji received the President on her arrival. Prime Minister Narendra Modi has arrived at Paharpur. The President will accompany the Prime Minister on a visit to her village and the two leaders will offer prayers at the sacred Santali Jahera and Ho Jahera groves. Later, the President and the Prime Minister will participate in a major public program at Rai Rangpur, marking 2 years of the Odisha government. Development projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to the people of West Bengal on the occasion of Paschim Bongo Divas today. In a social media post, she said that the day marks a significant milestone in the state's history, reflecting the aspirations and resolve that ensured West Bengal remained an integral part of India. The Vice President said that on this day in 1947, a historic decision paved the way for the creation of West Bengal as an integral part of India. He said that West Bengal occupies a special place in the country's civilizational and national life. In a social media post, Mr. Modi said that this day celebrates a state that has made immense contributions to the country's history through literature, music, art, spirituality, science, trade, commerce, and social reform. The National Testing Agency, or NT, has said that it is fully prepared for the smooth, fair, and transparent conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination, which is scheduled for tomorrow. In a statement, the NT has said that the exam will be conducted across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. The agency noted that more than 2 lakh personnel, including observers, coordinators, police forces and administrators, have been deployed. The NTA noted that multi-layered security framework has been put in place to ensure a fair and transparent examination. The Securities and Exchange Board of India, SEBI, has approved a series of reforms aimed at improving market efficiency, easing compliance requirements, and strengthening regulatory frameworks across the financial sector. At the 214th meeting held in Mumbai yesterday, SEBI Board simplified the transmission of securities for legal heirs and claimants that are in the name of deceased investors. The fact-check unit of the External Affairs Ministry has debunked claims on social media that Indian ambassador to China was summoned by Beijing to lodge protest over certain memes. It urged people to stay alert against such false and baseless claims on social media. U.S. Special Envoy Steve Witkoff and Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi are heading to Switzerland for the next round of talks. The talks were originally scheduled to begin yesterday, but were postponed because of ongoing hostilities between Israel and Hezbollah in Lebanon. Brazil recorded their first win of the FIFA World Cup with a comfortable 3-0 victory over Haiti at the Philadelphia Stadium today. Brazil had come into the game under pressure after being held to a draw by Morocco in the Group C fixture. The victory lifts the South Americans to the top of the group on goal difference. Earlier today, Morocco secured a 1-0 victory over Scotland in their Group C match. In men's cricket, the third and final ODI match of the series between India and Afghanistan will be played at the M.A. Chidambaram Stadium in Chennai this afternoon. The match is scheduled to begin at 1:30 p.m. The hosts have already secured the series with a 2-0 lead and will be aiming to complete a clean sweep of the three-match series. And International Yoga Day 2026, or IDY 2026, will be celebrated globally tomorrow. This year marks the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which emphasizes the importance of yoga for all ages. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज. आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टांगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम यादों की बारात में। ये प्रोग्राम खास तौर पर हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए है। तो आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे उनसे जुड़े हुए कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन और साथ ही सुनाएंगे हिंदी फिल्मी गाने। तो आप सुन रहे हैं ये पहला गाना किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म सच्चा झूठा से।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हैं हमारे साथ प्रोग्राम यादों की बारात में, और ये प्रोग्राम है हमारे खास तौर पर सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो उनसे जुड़ी ये इन्फॉर्मेशन आपको हम बताते हैं, जैसे कि उनके लिए बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, योजनाएं हैं, निवेश योजनाएं हैं, उन पर आज थोड़ी सी बात करेंगे और साथ ही सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने। जी हाँ, अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षा की, तो उनके लिए है हमारी भारत सरकार की ओर से आयुष्मान भारत, जो कि 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना 5 लाख तक का मुफ्त इलाज प्रदान किया जाता है। वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य कार्ड, जी हाँ, राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त वरिष्ठ नागरिक कार्ड दिखाकर सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता और कुछ विशेष रियायतें प्राप्त की जा सकती है। उसी तरह वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है, जो कि यह 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए एक विशेष सरकारी बचत योजना है, जो नियमित आय और आकर्षक ब्याज दर प्रदान करती है। और आइए अब प्रोग्राम में सुनते हैं अगला गाना, फिल्म आग ले लग जा से। आवाज है किशोर कुमार एवं लता मंगेशकर के।

आपने सुना ये गाना फिल्म रोटी से, और आइए अब सुनते हैं तेरे मेरे सपने का ये गाना आवाज है लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार के।

श्रोता दोस्तों, आपने सुना प्रोग्राम यादों की बारात। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी टनगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हैं फौजी भाई बहनों का ये कार्यक्रम गीतमाला।

आऊं झुककर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। श्रोता दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम गीतमाला में। और आइए सुनते हैं इस प्रोग्राम का पहला गाना लता मंगेशकर एवं मोहम्मद अजीज की आवाज में।

आपने सुना साधना सरगम एवं उदित नारायण की आवाज में अनारी फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम गीत माला में।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं दूसरा आदमी फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में। आप हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम गीतमाला।

दोस्तों, इसी गाने के साथ ही प्रोग्राम गीत माला आज के लिए यही संपन्न होता है। अब से थोड़ी ही देर में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित हिंदी और इंग्लिश न्यूज़।

0: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज ओडिशा के मयूरभंज जिले में अपने पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंची। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने राष्ट्रपति के आगमन पर उनका स्वागत किया। अपने पैतृक गांव में राष्ट्रपति ने 68वां जन्मदिन भी मनाया। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहाड़पुर गांव पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने गांव का दौरा किया। वे पवित्र संथाली जहेरा और हो जहेरा उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे, साथ ही कौशल विकास केंद्र और पहाड़पुर स्कूल का दौरा भी करेंगे। इसके बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे ऊर्जा, अवसंरचना, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सिंचाई सहित विभिन्न क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस अवसर पर वे जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य, समाज सुधार के माध्यम से देश के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान करने वाला राज्य है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइल्स थॉमसन का स्थान लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी अभ्यास संचालित कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। एजेंसी ने बताया कि कल होने वाली पुनर्परीक्षा के लिए उसकी तैयारियां पुख्ता हैं। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्षीय थे। श्री मुखोपाध्याय ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न मीडिया इकाइयों में सेवाएं प्रदान की और आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग में भी कार्य किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। विश्वभर में कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस वर्ष 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। योग दिवस का मुख्य समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के जबलपुर में योग दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच आज दोपहर एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi arrived at Bharatpur in Odisha's Mayurbhanj district today. He was received by Odisha Governor Dr. Hari Babu Kambapati and Chief Minister Mohan Charan Manchi. Earlier, President Draupadi Murmu had reached her village Bharatpur to celebrate his 68th birthday in the presence of the Prime Minister. The two leaders are scheduled to offer prayers at the sacred Santali Jahera and Ho Jahera groves and visit the Skill Development Centre and Bharatpur School, highlighting initiatives aimed at empowering tribal communities through education and skill development. Later in the day, the President and the Prime Minister will participate in a public program at Rai Rangpur, marking the completion of 2 years of the Odisha government. Developmental projects worth over 47,000 crore rupees will be inaugurated and foundation stones laid across sectors including energy, infrastructure, healthcare, education and irrigation. Both the President and the Prime Minister will also address a large public gathering on the occasion. Prime Minister Narendra Modi will commission 3 indigenously built Indian Navy platforms, INS Dounagiri, INS Sanshodhak and INS Agra in Kolkata tomorrow. Designed by the Navy's Warship Design Bureau and built by Garden Reach Shipbuilders and Engineers, the vessels are intended to strengthen combat operations, hydrographic surveying and anti-submarine warfare. INS Dounagiri, a project 17

0: सत्संगी
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, गीतों के सफर को हम जारी रखेंगे प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ और मैं हूं आपकी रेडियो साथी कविता। आइए श्रोताओं, इस प्रोग्राम में पहला गाना सुनते हैं अंदाज फिल्म से मोहम्मद रफी एवं आशा भोसले की आवाज में। इस फिल्म का निर्देशन रमेश सिप्पी ने किया है और इसका लेखन सलीम जावेद गुलजार और सचिन भौमिक ने किया। इसमें शम्मी कपूर, हेमा मालिनी, राजेश खन्ना और सिमी गरेवाल हैं।

श्रोता दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी कि आपकी रेडियो साथी कविता के साथ प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जिसमें हम आपको सुनाते हैं 60 से लेकर 80 के दशकों तक के बेहतरीन गाने। जी हाँ, बात हो रही है 80 के दशकों की, तो सिलसिला फिल्म को हम कैसा छोड़ सकते हैं। जी हाँ, ये सुनते हैं सिलसिला फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की आवाज में।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।

आपने सुना लता मंगेशकर किशोर कुमार के आवाज में फिल्म थोड़ी सी बेवफाई का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे प्रोग्राम हिंदी क्लासिक म्यूजिक।

लता मंगेशकर एवं किशोर कुमार की, माफ कीजिए, लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना फिल्म कालीचरण का ये गाना।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोता दोस्तों, आपने सुना हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये प्रोग्राम जिसमें हम सुनाते हैं 60 से लेके 80 के दशकों तक के गाने। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में। कहीं जाइएगा नहीं, सिलसिला जारी रहेगा हिंदी फिल्मी गानों का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
1: Superior handling.
0: हिंदी फिल्मी गानों के इस सफर को हम जारी रखते हैं और आइए सुनते हैं वास्तव का ये गाना।

आपने सुना उदित नारायण एवं अलका याग्निक की आवाज में, क्योंकि फिल्म का ये गाना आप श्रोता हमारे साथ सुन रहे हैं प्रोग्राम हिंदी फिल्मी गानों का। और अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिडडे न्यूज, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार, और उसके बाद हम फिर लौटेंगे प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ओडिशा के मयूरभंज जिला स्थित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पैतृक गांव पहाड़पुर पहुंचे। राष्ट्रपति मुर्मू अपने 68वें जन्मदिन के अवसर पर अपने गांव में हैं। ओडिशा के राज्यपाल डॉ. हरिबाबू कंबमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
1: ओडिशा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के, जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया, जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडा बेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहां प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
0: इस समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर रायरंगपुर में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस अवसर पर ऊर्जा, परिवहन, औद्योगिक ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और पेयजल से जुड़ी 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। इस समय प्रधानमंत्री एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: प्रगति परिदा जी, ओडिशा के मंत्री गणेश जी खुंटिया जी, कृष्णचंद्र महापात्र जी, सांसद नवाचरण मांझी जी, मनमोहन सामल जी, बैजन पांडा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, हमारा ओडिशा इन दिनों उत्सवों के आनंद में डूबा हुआ है। यहां का गण पर्व रज पिछले हफ्ते ही धूमधाम से मनाया गया है। महाप्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा की तैयारियां भी पुरजोश चल रही है। मयूरभंज के बारीपदा रथ यात्रा को लेकर भी उत्साह का माहौल है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। वे हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंग दिवस समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश के 9,44,00,000 किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे अंतरित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंग दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राज्य के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में कल स्वदेश में निर्मित नौसेना की 3 जहाजों INS धुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का अनावरण करेंगे। इन जहाजों का निर्माण भारत में किया गया है। इनका उपयोग समुद्री सुरक्षा, सर्वेक्षण और पनडुब्बी रोधी अभियानों में किया जाएगा। ये भारत की रक्षा जहाज निर्माण क्षमता को मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह आज कोल्हापुर और इचलकरंजी के दौरे पर हैं। वे महालक्ष्मी मंदिर परिसर में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया और कोल्हापुर के पुलिस परेड ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित किया।
2: मोदी जी प्रधानमंत्री बने और अयोध्या में भव्य राम मंदिर आज अपनी भगवी ध्वजा के साथ खड़ा हुआ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जो औरंगजेब ने

0: कॉरिडोर बन रहा है और अब अंबाबाई का कॉरिडोर बनाने का काम भी शुरू हो गया।
1: इसके बाद भी इचलकरंजी में जनता सहकारी बैंक के नए भवन का उद्घाटन करेंगे तथा एक सहकारी चीनी कारखाने के नामकरण और विस्तार के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सरकार ने जनहित में 16 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर की गई विशेषज्ञ समिति के समीक्षा के बाद लिया गया। समिति ने पाया कि इन दवाओं के संयोजन का पर्याप्त

0: चिकित्सीय औचित्य नहीं है और इनके उपयोग से स्वास्थ्य संबंधी जोखिम हो सकते हैं। प्रतिबंधित दवाओं में त्वचा दर्द और शरीर में ऐंठन के उपचार तथा कुछ एंटीबायोटिक दवाएं शामिल हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य केवल सुरक्षित, प्रभावी और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। मंत्रालय ने राज्य औषधि नियामकों और संबंधित एजेंसियों को इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी कल होने वाली नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत आज देश भर में मॉक ड्रिल कर रही है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ यह अभ्यास पूरे दिन जारी रहेगा। इस अभ्यास में 2.5 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। इसका उद्देश्य परीक्षा का सुरक्षित, निष्पक्ष और सुचारू संचालन सुनिश्चित करना है। एजेंसी के अनुसार नीट यूजी पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में आयोजित की जाएगी, जिसमें 22,79,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा में सीसीटीवी निगरानी, आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन और परीक्षा सामग्री के सुरक्षित परिवहन जैसे विशेष सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई हैं। सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी विवेक अग्रवाल को वर्ष 2026-27 के लिए वित्तीय कार्यवाही कार्यबल का उपाध्यक्ष चुना गया है। वे ब्रिटेन के गाइस थॉमसन का स्थान लेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस नियुक्ति से आतंकवाद के लिए धन मुहैया कराने और गैरकानूनी वित्तीय नेटवर्क के खिलाफ संघर्ष की भारत की प्रतिबद्धता मजबूत होती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छे की तरह से मैनेज कर सकते हैं और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मिति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज 9 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाईबैक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाले है।

0: कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर हो जाएगी।
1: भारत सोमवार से शुरू हो रही 2 दिवसीय ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार बैठक में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रतिनिधिमंडल नई सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श करेंगे। बैठक में नई तकनीक से जुड़े सुरक्षा खतरों और आतंकवाद से निपटने के उपायों पर भी चर्चा होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक हैं। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कल तक कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की संभावना व्यक्त की है। भारतीय सूचना सेवा के पूर्व अधिकारी दीपांकर मुखोपाध्याय का कल रात लंबी बीमारी के बाद कोलकाता में निधन हो गया। वे 77 वर्ष के थे। क्रिकेट में चेन्नई में भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरे और अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने 12वें ओवर में 4 विकेट पर 42 रन बना लिए हैं। उधर फीफा फुटबॉल विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में कुछ स्थानों पर कल तक मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया। भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा अंतिम एक दिवसीय क्रिकेट मैच चेन्नई में जारी। और फीफा विश्व कप में ब्राजील ने हैती को 3-0 से हराकर पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी
3: आप श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हैं हमारा प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। जी हां, हिट्स ऑफ 90s में आज हम पहला गाना सुन रहे हैं फिल्म संघर्ष से। ये फिल्म बनी थी 1999 में। ये बॉलीवुड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है। इसमें अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा और आशुतोष राणा मुख्य भूमिका में हैं।

उदित नारायण महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में आपने सुना दिल से फिल्म का ये गाना। आप श्रोता हमारे साथ बने हुए हैं प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s में, और आइए अब सुनते हैं सैनिक फिल्म का ये गाना कुमार सानू एवं साधना सरगम की आवाज में। सैनिक फिल्म बनी थी 1993 में, इसमें अक्षय कुमार, अश्विनी भावे, रोनित रॉय और फरहिंद मुख्य रोल्स में हैं। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गाना।

0: श्रोता दोस्तों, आपने सुना प्रोग्राम हिट्स ऑफ 90s। आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में।
1: Handling stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: श्रोता दोस्तों, अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे 2:58 पर न्यूज हेडलाइंस। उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। मिशमी कमान श्रोताओं के कार्यक्रम के बाद आप सुन पाएंगे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। उसके तुरंत बाद हम लौटेंगे 3:30 पर प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में।

0: बॉडी पे, उसको आप डिक्रीज करते हैं, और साथ ही साथ आपका जो हैप्पी हार्मोन है, ओके
1: जी
0: जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, गाबा हो गया, और जो हमारे नेचुरल पेन किलर, बॉडी पेन किलर है, एंडोरफिन हो गया,

नाइ आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेब सिपा सिसिपसी चुमसी मीटर हो पा चिपा किलो हर्स मई मचलांग खमताई खमती हौ को माहो मेने वन चेने लंगनी पीते सोहिंग पा साउ टू नई इंग्राजी पीम सोहिंग साहु नुन नई सावन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी खाउ मेने नेशन वाइड मॉक ड्रिल नई ओन्ना नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेस टेस्ट री एग्जामिनेशन सोहिंग साहु मे औसी तंगते मा एन टी ए खाउ लौखमा मोहक नीट यू जी सोहिंग साहु री एग्जामिनेशन नई निनी ननाम से तक औपिन मा यौ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन मंगा मई ngun song heng sipa kukte na pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana pinma function new delhi mai ngun nei hama ka dcm chauna min wan manga mai do it yourself lab nei arunachal pradesh innovation nei and investment port niti bihar mai put ho kan hama ka namho Department of School Education and District Administration Khong Jela Tirap Khau Second Felicitation Program Nai Hum Phom Lom Kan Si Program Nai Tang Tema Hangcha District Level Top 3 Student Khong Sam Tan Tu Ha Thing Sip Song Tan Khong Pi Mu Song Hing Sau Si Song Hing Sau Ha Na Golden Jubilee Meritorious Student अवार्ड ने सर्किट हाउस कम्युनिटी हॉल खनसा वन मंगा मई अवार्ड ने हकन का नम हो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑर्डिनेशन मीटिंग खोंग हेड ऑफ स्कूल ब्लॉक खनसम डिस्ट्रिक्ट फंक्शनरीज नई वन मंगा न एडीसी लोअर सियांग मोकर रिवा डीडीएसई लोअर सियांग तागे काकी नियाती डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल लिखाबारी मई मीटिंग नई तंगमा का मई मीटिंग नई तंगमा हंगचा पोंगलुई सैटिस्फेक्शन इम्प्रूवमेंट खोंसिप तान सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट मई औसी मीटिंग नई तंगमा का नमहो कुनफंग एनएससीएन के अंगमाई गुलंगमाई वन अनपोन का वन बुकथू मई आसाम राइफल खनसम लुक्सु तिराप खाउ हुमकनसी नियाती हाइडल खनसा मई सेवकनका कुफू एनएसियन नई हिकचू

आपने सुना खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप श्रोता बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज में। और आइए अब सुनते हमारा प्रोग्राम बॉलीवुड अपडेट और साथ ही सुनेंगे हिंदी फिल्मी गाने। बॉलीवुड अपडेट में बॉलीवुड की खबरों की ओर चलते हैं और आइए जानते हैं बॉलीवुड की खबरों में क्या कुछ है। हाल ही में एक है फेमस एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट ने बताया कि फिल्मों के इंटीमेट सीन में सिर्फ एक्टर ही नहीं बल्कि कई एक्ट्रेसेस भी बहक जाती हैं। जैकलिन फर्नांडिस और सिद्धार्थ मल्होत्रा के किसिंग सीन के दौरान कट बोलने के बाद भी वे किस करते रहे। अगली खबर है अक्षय कुमार और ट्विंकल खन्ना की प्रेम कहानी से जुड़ा एक पुराना किस्सा फिर चर्चा में है। एक कार्यक्रम के दौरान ट्विंकल ने फिल्म मेला की शूटिंग के दिनों को याद करते हुए बताया था कि उस समय उनका ध्यान अक्षय कुमार पर रहता था। इसी दौरान आमिर खान के साथ हुई एक मजेदार बातचीत का जिक्र भी उन्होंने किया। अक्षय के ख्यालों में खोई ट्विंकल पर भड़के थे आमिर। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान एक बार फिर अपनी निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। रिपोर्टर्स के मुताबिक वह 5 जुलाई को गौरी स्प्रेड के साथ शादी के बंधन में बंध सकते हैं। बताया जा रहा है कि दोनों शादीपूर्ण और निजी समारोह में अपने रिश्ते को नया नाम देंगे। शादी में केवल परिवार और करीबी लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं अगली खबर है चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा भी कास्टिंग काउच का सामना कर चुकी है। मदालसा ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करियर के शुरुआत में एक डायरेक्टर ने उन्हें गंदी डिमांड की थी। वहीं बॉलीवुड की खबरों में आगे है श्रद्धा कपूर की अपकमिंग बायोपिक इथा का टीजर कॉकटेल 2 के साथ रिलीज हुआ है। ये सोशल मीडिया पर चर्चा में है। इस बीच खबर आई है कि श्रद्धा और उनके परिवार के 4 सदस्य अब अलग अलग घरों में रहते हैं। अनुष्का ने बताया कि वह काफी समय से कंजीव करने की कोशिश कर रही थी पर हो नहीं पा रहा था। फिर उनकी बहन के कहने पर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। उनके सारे चेकअप हुए, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी।

एक्स की क्वालिटी भी ठीक थी, आदित्य के स्पर्म की क्वालिटी भी बढ़िया थी, तो 35 की उम्र में आईवीएफ से मां बनेंगी एक्ट्रेस बोली, मुझ में कमी नहीं थी। और आइए अब सुनते हैं फिल्म दिल धड़कने दो का ये गाना प्रियंका चोपड़ा एवं फरहान अख्तर की आवाज में।

दोस्तों बॉलीवुड अपडेट में आगे है खबर। कृति सनन, शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना की फिल्म कॉकटेल 2 रिलीज हो चुकी है, जिसे आलोचकों और दर्शकों से मिली जुली प्रतिक्रिया मिली है। फिल्म में बिकनी सीन, खासकर कृति सनन के क्लोजअप शॉट्स सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। मृणाल ठाकुर और धनुष के ब्रेकअप की खबरें सोशल मीडिया और फिल्म फेयर सूत्रों से सामने आई हैं। दोनों ने लंबे समय तक अपने रिश्ते को निजी रखा, लेकिन अफवाहें लगातार बनी रही। सोशल मीडिया पर इन दिनों जिस फिल्म की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो सनी देओल की बंटवारा 1947 है। ये फिल्म इसीलिए भी खास है क्योंकि इस फिल्म के साथ प्रीति जिंटा बॉलीवुड में वापसी कर रही हैं। श्रोता दोस्तों, आप हमारे साथ बने हुए थे प्रोग्राम फिल्मी बॉलीवुड अपडेट में, और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे वांचो श्रोताओं का समाचार।

एजा आकाशवाणी डानगर अनि जुनलेट मनी चा तारीख हुनिबार इरुमा केम वांचो साय का होवांग वांग ना होवांग ए का हो पाई फाले मंचुई जमे कमे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ए नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी री एग्जामिनेशन 2026 थोमा ले अनि मॉक ड्रिल पांगनु खाटवाई टू जाले NTAA NEET UG 2026 re-examination ngani ango tangke rai le pangwe zau tha le na changle atua ja pu le ho le haya porikha candidates pangnu lakcha ani yak puramban aku eya ko ong rai le india ma hoga puniban ata cities antole michawan do chu banali cities to le ango tai prime minister narendra modi e मनी न्यू दिल्ली तो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पीएम वीबीआरवाई खामा मुन जाटनी होली क्रॉस जो आहन कोले हया खांगे देशमा मोट लाख बनगा एजो कपाई हया स्कीम खामा पोंगवांग लेके आंग मोकांग के थाम ए जात बनगा पोंग हबोमा हले मोट अलाई के थम एचु लेटो यात्रम पोंगले बोले कपाई डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ए मनी अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क एपीआईआईपी होनुइमा डू इट योरसेल्फ डीआईवाई लेके लेपका डाप के बोमा नीति विहार इतांग नगरांग के हजा एपीआईआईपी मा अटू अजा के स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट टू सो तो चुआकले हया खामा ला ली तोन ली मई के जात रिंग जाऊ के बोमा था हंग अंग का हान पक मचू चौन पाई ले ना मई ले स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट प्रोटोटाइप बोमा ला ली तोन ली बामा ले पंगवाई अलिंग लोक रिंग ले हया मा डीसीएम ए गवर्नमेंट ची मखंग है मोट ली सत ली अनो होरन होरन होन जे अलाय के बोमा एंटरप्रेन्योरशिप थम रोंग मचू ना मई को ले हले के नुई जा प्लेटफॉर्म रिंग ले को के मखंग है संरण थम ए मोंग सम्यांग ले मोकांग मैया इलेवन ले हाफाय दम ले एपीआईआईपी खामा स्टार्टअप्स बन रमे इन्वेस्टर्स पु हाटो होम होन जे आहो ले चुवन ले कोले अरुणाचल प्रदेश मा स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आर आई सत मोड इजलेट बनगा तारीख तो खांगा होवांग वांग ले मोकना हाया खोमा सोशल मीडिया मा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ए वोटर बु आंग मनपट अंग रे तो बंदो के थम बोमा हठो तो वे अपत ले थम दो के थम ले पंगनु सा हा तो वे इलेक्ट्रल रोल्स मा मोठाय स न्याय चिते ले चाउ था ले ना चांग आंग हया मोटो खनो तम बक को ले होले हा पाय तम ले सीएम खांडू ए ची मंजू मनी इटानगर मा

आपने सुना हिंदी फिल्मी गाने आप बने हुए हैं हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ में और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद-ए-मिस्मी श्रोताओं का समाचार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब प्रस्तुत है इदुमिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी ईटानगर थालापुजी जैनहु मानुली एतनी इदुमिश्मी आहोला के जी दरगालम्बो अनया नीट यूजी एग्जाम अखाउची पो एन टी एम ए एतनी इंडिया टिका एम एम मोक्रिल अखागादा अहोगा महो अनया इंडिया मचि माओ मंगा ने मारहु खेगे आती आई दोने अवताची आतिपु हुलुपी माने अन्यो कानि लाग तोने एजारिम्बा इनहु खिनी मे आनबु मे नीट यूजी एग्जाम हगाई बोदा ला होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मे बुनी पीएम बीबी आर वाई कोकोमान एम इंडिया टिका एम एम चे एचाहन एहन दन जोका चिया तारहु खासो लाग इमो नंबर एचर नंबर हो माता पों हाओ मा जे प्रोग्राम आय पहा बदा आओगा आई स्किन कोकोमान एम पुनी हो ने एचर नंबर हो मा पों चिओ मा हो जोका आया इमो आलम रो मैम एला मामा एजर कासो ता पों चिओ गा ओदा ला होगा डिप्टी चीफ मिनिस्टर टूर्नामेंट में बुनी ईटानगर से ए पी आई आई पी मान एम डी आई वाई लैब में आई पहा आओगा मैंने अमाय का इन मैम आ लैब मने अंजे हाथुमु पचा आज गजे में हे महो टेस्ट आसो सुबह बोए लैब में आतिका से आई ओ नंबर तान दो आर एल सदा ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर में ला प्रोग्राम माने आम आयो का इनया इमु हलो समे काजी गने आम आयो एको बे आम एथया मन दो लाके बदा होगा आहा एचला पुची जो हम मची ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआर अखपगम बमने आतिकाची बोर्ड हा इमु केबने एनएच आमु इलेक्शन ऑफिस मा हातेगने बोर्ड आजपो आजपंबो मा आरजीना ने चीफ मिनिस्टर पेमा खंदमे लाहेगादा होगा चीफ मिनिस्टर में बोने बियाला तो चने न्यूचे आमु हाथे बमहो अपर सुबंसी डिस्ट्रिक्ट में है आमु जोपते हो चिपुआ बियालो इमोलन रो में उनको के चीते पगाम बता आहोगा तेरा डिस्ट्रिक्ट में ची एजुकेशन डिपार्टमेंट में गोल्डन जुबली मेरिटरियस स्टूडेंट्स अवार्ड स्कीम को कोमन है आ डिस्ट्रिक्ट में ची कासो क्लास में हुलु निमा ले बचे प्रांत एया मैं नंबर असुन खुंसा कम्युनिटी हॉल मने पाउ प्राइस नया सर्टिफिकेट आजपद ने मेमेंटो अतिला बदा आहोगा लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ए डी सी मकर रिबा में बुनी लिखा बलिया तिगो ची डी सी ऑफिस माने डी एल एम सी मीटिंग जिनेगा मा डी डी एस सी तागे ताकि लापे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट कोको खाजिगा स्कूल मा माचे हेतालम रोदो ने एजुकेशन डिपार्टमेंट माचे किसा आजालम रो में गिगा बने सी बी एस ई एग्जाम लापे उखो थोपुची पो चिचा बदा ला होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को कमा ने पपुमपर डिस्ट्रिक्ट माचे क्लास हूं ने हलुनिमा प्रयाको आ नंबर है बुनी यूपिया तिकोचे डी सी ऑफिस माने प्राइस अपिका लादा ला होगा एचर ब्रह्मता पहु प्राइस तो ने नया सर्टिफिकेट आजप्रगता चिगम्बा याको आ नंबर मा दोईमो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास हूं माचे यंगम माइंग किमिन

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हमारे साथ हिंदी फिल्मी गाने, और ये गाना आप सुन रहे हैं फिल्म हेलो ब्रदर से कुमार सानू एवं अलका याग्निक की आवाजों में।

दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का ये गाना आपने सुना। आप बने हुए हमारे साथ प्रोग्राम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स में, और आइए अगला गाना सुनते हैं फिल्म बीवी नंबर 1 से। आवाज है अनुराधा श्रीराम अभिजीत भट्टाचार्य की।

आप शुद्ध सुन रहे थे हिंदी फिल्मी गाने, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से। श्रोता, हमारी दूसरी प्रसारण सभा के साथ है, आपके साथ थे प्रसारण अधिकारी पंचानंद डोले, तकनीकी अभियंता टिम और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सभी सहकर्मी। और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुन पाएंगे प्रोग्राम गुड इवनिंग ईटानगर आरजे अपर्णा के साथ। तो मुझे आपके रेडियो साथी कविता को दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार, हैव अ गुड टाइम अहेड।

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां फ्रेंड्स, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता ना बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। जी हाँ दोस्तों, और आज इसी पॉजिटिव थॉट के साथ ही हम अपनी तीसरी प्रसारण सेवा की आगाज करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में संचार निष्पादक गए रहते, तकनीकी अभियंता डी नियोग तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के अपने आरजे अपर्णा आप सभी का तह दिल से स्वागत करती है दोस्तों। जी हाँ, और साथ ही हम जो है थैंक यू बोल देते हैं आरजे कविता को, जिन्होंने अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान आप सभी का भरपूर मनोरंजन तो जरूर की होगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो हैंड ओवर करने के लिए आरजे कविता। बहरहाल दोस्तों, एक बार फिर मैं आप सभी को बता देती हूँ, अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक आप सब बने रहेंगे हमारे साथ, यानी कि संचार निष्पादक गए रहते, तकनीकी अभियंता डी नियोग तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा मौजूद रहेगी आप सभी के खिदमत में। करने आई है एक बेहद खूबसूरत सी शाम केवल आप दोस्तों के नाम, और बस शुरू कर ही देंगे हम आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम। जी हाँ दोस्तों, गुड इवनिंग इटानगर। बस अब से कुछ ही देर में तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions.

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम में। ये सेगमेंट जी हाँ दोस्तों होता है एक कंपोजिट प्रोग्राम का, जहां ना हम केवल आप सभी की मनोरंजन करवाते हैं बल्कि यूजफुल इंफॉर्मेशन साझा करते हैं या फिर कुछ शॉर्ट स्टोरीज आप सभी से साझा करते हैं। आज मैं एक खास बात कहने के लिए मैं इस प्रोग्राम के जरिए बात कहना चाहूंगी आप सभी को कि अच्छाई और बुराई तो दोस्तों हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में होती है और इंसान की फितरत है अच्छाई और बुराई को मिलाकर ही। तो बुरे की पहचान जो है दोस्तों हम कैसे कर लेते हैं और कैसे हम समझ लेते हैं कि सामने वाला बंदा बुरा है या फिर अच्छा। एक स्टोरी आप सभी के लिए है। एक राजा था, जब उसको पता चला कि मेरे राज्य में एक ऐसा व्यक्ति है जिसका सुबह सुबह अगर मुंह देख लिया जाए तो दिन भर उसे भोजन बिल्कुल नहीं मिलता। जी हाँ दोस्तों, और राजा को सच्चाई जानने की इच्छा से उस व्यक्ति को राजा ने अपने साथ उस रात को सोने को कहा और दूसरे दिन राजा की व्यस्तता ऐसी बढ़ी कि राजा शाम तक भोजन ही नहीं कर पाया। इस बात से क्रोध में होकर राजा ने उसे तत्काल फांसी का दंड देने का ऐलान कर दिया। तो फांसी देने से पहले हमेशा आप सभी को पता ही है कि एक आखिरी इच्छा जो है पूछी जाती है जो फांसी पे चढ़ता है उस इंसान से। तो उससे पूछा गया कि आखिरी इच्छा बताओ तुम्हारी क्या है, तो उसने कहा कि राजन मेरा मुंह देखने से आपको शाम तक केवल भोजन नहीं मिला किंतु आपका मुंह देखने से मुझे मौत मिलने वाली है। यानी कि आपका मुंह देखकर तो मैं मरने वाला हूं, आपने मुझे मौत की सजा दे दी है। इतना सुनते ही राजा जो है लज्जित हो गया और राजा को संत की वाणी याद आ गई कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिला कोई, खुद आपन को टटोला तो मुझसे बुरा ना कोई। तो मैं दुनिया में बुराई देखने चला था लेकिन मुझे कोई बुराई बुरा तो दिखा ही नहीं, लेकिन जब मैंने खुद को टटोला तो शायद मुझसे बुरा इंसान तो दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए दूसरों की बुराई को जांचने से पहले खुद की बुराई को लोगों को पता होनी चाहिए। तो चलिए ये तो सिख मैंने जो है एक जो मॉरल स्टोरी आप सभी को बता दी, उम्मीद करती हूं कि पसंद आए होंगे। तो चलिए आप सभी के लिए बहुत ही प्यारे प्यारे गीत मैंने रेडी करके रखी है, तो एंजॉय कीजिए अब गुड इवनिंग ईटानगर के मनोरंजन के सेगमेंट में।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही हमारी आज की जो है गुड इवनिंग ईटानगर का ये सेगमेंट अभी यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल अब से बस कुछ ही देर में यानी कि 4:45 से लेकर शाम के ठीक 5:05 तक अब बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नौकते समाचार सुन सकेंगे। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ओडिशा में 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आज राजधानी ईटानगर स्थित लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश में इस महीने की 15 तारीख से स्पेशल इंटर्नशिप रिविजन SIR प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी योग्य नागरिकों से इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क में अत्याधुनिक डू इट योरसेल्फ लैब का उद्घाटन किया। APIIP में आयोजित स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पिचिंग सत्र में भी भाग लिया। सरकार ने 16 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाओं में उत्पादन बिक्री और वितरण पर प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कल होने वाली NEET UG पुनर्परीक्षा से पहले देश भर में मॉक ड्रिल। और फीफा विश्व कप में आज ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स का सामना स्वीडन से रात 10:30 पर होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के रायंगपुर जिले के डानबोस में राज्य सरकार के 2 वर्ष पूरे हो रहे उपलक्ष्य में आयोजित एक भव्य सार्वजनिक समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर ओडिशा की जनता ने 47,600 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनके जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा है कि ओडिशा की एक पुत्री ने देश का सर्वोच्च संवैधानिक पद प्राप्त किया है और वे राष्ट्र का मार्गदर्शन कर रही है जो राज्य की जनता के लिए अत्यंत गौरव का विषय है। ओडिशा के राज्यपाल हरिबाबू कुंभमपति, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और स्थानीय लोगों ने उनके आगमन पर गर्मजोशी से स्वागत किया।
2: उड़ीसा के आदिवासी इलाकों तक पहुंचने की एक अहम कोशिश के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मयूरभंज जिले में अपने गांव पहाड़पुर गई। प्रधानमंत्री ने पवित्र सांथाली जोहरा और जो जहरा पूजा स्थलों पर प्रार्थना की और स्थानीय आदिवासी समुदायों के लोगों के बातचीत के जिससे उन्हें उनकी समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और जीवन शैली के बारे में जानकारी मिली। प्रधानमंत्री ने स्किल डेवलपमेंट सेंटर और SLS मेमोरियल स्कूल का भी दौरा किया जहां उन्होंने छात्रों से बातचीत की और उन्हें शिक्षा कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के देशों में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। ये दौरा इसलिए भी खास था क्योंकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुर्मू के 68वें जन्मदिन के मौके पर उनके गांव में उनका साथ शामिल हुए। इन कार्यक्रम से आदिवासी सशक्तिकरण, शिक्षा को बढ़ावा देने और समावेश विकास के प्रति उनकी साझा प्रतिबद्धता को पता चलता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अब रायरंगपुर के डांडाबेस में उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित एक बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। यहाँ प्रमुख क्षेत्रों में 47,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विकास परियोजना का उद्घाटन और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। आकाशवाणी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल दिवस पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा है कि ये दिन पश्चिम बंगाल के भारत का अभिन्न अंग बने रहने के संकल्प और आकांक्षाओं का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि वर्ष 1947 में इसी दिन एक ऐतिहासिक फैसले में भारत के एक अहम हिस्से के रूप में पश्चिम बंगाल राष्ट्र के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल साहित्य, संगीत, कला, आध्यात्मिकता, विज्ञान, व्यापार, वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध है। इधर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर स्थित लोक भवन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ पश्चिम बंगाल के स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। अपने

0: महीने की 15 तारीख से स्पेशल इंटेंसिव प्रिविजन SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे इस अहम प्रक्रिया में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि वोटर लिस्ट सही, समावेशी और अप टू डेट बनी रहे। इस बीच मुख्यमंत्री ने ईटानगर में संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर BLO के जरिए अपनी जानकारी दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी की। वहीं अपर सुबनसिरी जिले में बूथ लेवल ऑफिसर्स BLOs ने वोटर की जानकारी वेरीफाई करने और योग्य नागरिकों को उनके वोटर रिकॉर्ड अपडेट करने में मदद करने के लिए घर घर जाकर संपर्क करना शुरू कर दिया है। जिला अधिकारियों को भरोसा है कि जनता के सहयोग से BLOs की कोशिशों से जिले में SIR प्रक्रिया आसानी से सफलतापूर्वक पूर्ण हो सकेगी। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क में अत्याधुनिक डू इट योरसेल्फ लैब का उद्घाटन कर APIIP में आयोजित स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पिचिंग सत्र में भाग लिया। नवस्थापित DIY लैब, 3D प्रिंटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, खाद्य गुणवत्ता प्रशिक्षण उपकरण और एक समर्पित ब्रांडिंग सत्र क्षेत्र सहित अन्य उत्पादन प्रोपराइट सुविधाओं से सुसज्जित है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जा रहा है। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। ये विषय हर उम्र के योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 संस्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा।
1: नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
2: हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें और इस बार के योगा के ऊपर ये डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते और ये प्रूव हो चुका है।
1: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: स्लोवाकिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। स्लोवाकिया गणराज्य में भारतीय राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी से बताया है कि स्लोवाकिया में योग और आयुर्वेद बहुत लोकप्रिय है। हमारे संवाददाता ने बताया कि भारतीय दूतावास और अन्य संगठन राजधानी ब्रातिस्लावा और अन्य स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं।
3: स्लोवाक रिपब्लिक में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए भारतीय दूतावास का मुख्य कार्यक्रम ब्रातिस्लावा शहर में आयोजित किया जाएगा। दूतावास मशहूर ब्रातिस्लावा कैसल में भी एक योग कार्यक्रम आयोजित करेगा। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने बताया कि दूतावास परिसर में हर दिन 2 योग कक्षाएं आयोजित की जा रही हैं और अब पूरे स्लोवाकिया में सैकड़ों योग प्रशिक्षण केंद्र संचालित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में हुई स्लोवाकिया यात्रा के दौरान आयुष मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन से स्लोवाकिया में योग को और मजबूत करने के रास्ते खुलने की उम्मीद है। स्मृति एस पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ।
0: इस कड़ी में आकाशवाणी समाचार आयुष राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव का विशेष साक्षात्कार प्रसारित करेगा। आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 MHz चैनल पर यह साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। श्री जाधव ने बताया है कि कामकाजी लोगों के लिए सरकार ने वाई ब्रेक ऐप भी शुरू किया है।
4: लोग दिन भर चेयर पे बैठे के काम करना पड़ता है, वो लोग भी जब लंच ब्रेक होता है तब तक बहुत सारी थकान वो लोगों में आती है, तो वो थकान दूर करने के लिए भी उनके लिए वाई ब्रेक नाम का एक हमने ऐप निकाला है कि उसमें 10 मिनट में तुम चेयर पर बैठे बैठे कौन से आसन कर सकते हो, करने से जो भी तुम्हारा थकान आई होगी वो दूर।
0: फुटबॉल विश्व कप 2026 में आज ग्रुप सी के मैच में मोरक्को ने स्कॉटलैंड को 1-0 से हराया। मोरक्को ने मैच में शुरू होने से बढ़त बना ली है। इससे पहले ग्रुप डी के मैच में अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया को 2-0 से हराकर नॉकआउट चरण में जगह पक्की कर ली। मेक्सिको के बाद अमेरिकी टीम नॉकआउट चरण में पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई है। पहली बार अमेरिका ने एक मैच बाकी

0: India and South Korea have reaffirmed their commitment to deepening cooperation in public administration and digital governance. Personnel, Public Grievances and Pensions Minister Dr. Jitendra Singh today held bilateral talks with the Minister of Interior and Safety of South Korea, Yoon Ho-jung, in New Delhi. That's all in this news bulletin. Namaskar.
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए अब प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
2: अमांगा नंग रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ व रंजा वन बंगा पाजी सा बड़ा रेडियो नंग नोक्ते को बच्चों तारन तजा जुनजंग रोगनी तारिख हुनी बच्चा को बच्चों को यहन जाफुन ताजामा अरे खबर है चुतात मंगन। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA हेमा नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट NEET UG री एग्जामिनेशन 2026 होन माको ठजा दिया खन्ना मॉक ड्रिल पर होन माजो अधिको नैनपटांग में NEET UG 2026 री एग्जामिनेशन पर स्मूथ फेयर ले ट्रांसपेरेंट गेम सॉक्ट ब्रांग NTA है पूरा लाखों कम्पनी जोंगा मचो ठोको बाजो अधिको NTA हेमा इन चोटो कटा को रोकने वन्नी 0.79 लाख कैंडिडेट से रंग इंडिया वा चाह बंगा रोक बंगा वंट है सिटीज ले मीडिया वा चीवन बिली सिटी से ना एग्जाम पा इस्यू टुके जाओ नामा चोटो को बाजाओ। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मामजा न्यू दिल्ली नंग प्रोग्राम दंगता को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना PMVBRY खन को हजतनी चाह बिली कुटियंगुन पा फन को बाजाओ अधिको अरेंगुन फन कोई का पमा दिया खन को चीवन बंगा लाख साकुरी चोकु रंग जा सपोर्ट हुआने का अधिको अरे स्कीम खन को खबंग रंग साकुरी चोटे हेमा चीवन बंगा हाजत गोन एचो वजा नाले साकुरी लुसेट हे नम साकुरी वंटे लुसेट को अल्ले को जं को हाजत रंगुन एचो को वजा गाम जो चोटो को एका। डिप्टी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन ममजा अरुणाचल प्रदेश इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट पार्क APIIP को डू इट योरसेल्फ DIY लुसिट को डम को APIIP विवेक विहार को स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट पिचिंग सेशन हुन ताको मिन जो नो पाजा अधिकार डिजाइन हुने का पा स्टार्टअप एक्सपेरिमेंट नेना हो है हुन प्रोटोटाइप से डेवलप हुन लाए अडो मो मैन्युफैक्चरिंग हुन मा को प्रोडक्ट पंगाक्सन से रंग लाए प्रोडक्ट क्वालिटी लाए मार्केट नंग वन रंग रेडी हुन रंग थमला में जो हुने का अधिको स्टेट व जंचो पामी है प्रोग्रेस पा मोइनकुरी लामा DCM मा टू व जनरेशन है गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटीज इंफ्रास्ट्रक्चर ले इनोवेशन हे ले एंटरप्रेन्योरशिप लुसिट को एका पमा मानन जो वंगे कांगा मा चोटो को बाजा अधिको APIIP खन को चीवरम स्टार्टअप से मा इन्वेस्टर से मा था को प्रेजेंटेशन पर होन बाजा। अरुणाचल प्रदेश नंग स्पेशल इंटेंसिव रिविजन SIR पर अरे जंग चीवन बंग तारीख में लाभंग ताजा अधिको चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मा सोशल मीडिया पोस्ट ने मा मत्तो मिन्यान वोटर एनरोलमेंट रंग क्वालिफाइड ले मामा एनरोल हुआ तो नहीं ना अरन्या रंग अलम रे एक्सरसाइज को पाठ का प्रांग चोटो को बाजा अधिको चीफ मिनिस्टर मा मजा अते इन्यूमिनेशन पर अते ठेवा BLO ने मा लाहुन ताजा अधिको अपर सुबंसरी वा बूथ लेवल ऑफिसर्स BLO से मा हुम हुम ना फोंग खोम ला मा वेरीफाई हुन पर लाभंग ताजा अधिको पब्लिक है रेस्पॉन्स पर असन ले BLO है मा मिंग इलारी जो गा मा अखा हुआ निकी गा मा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल से मा चोटो को बाजा। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन टी रब डिस्ट्रिक्ट है अरोम मा गोल्डन जुबली मेरिटोरियस स्टूडेंट अवार्ड खन का 2024-25 एकेडमिक सेशन को क्लास 3 पर मा 12 तो को वा डिस्ट्रिक्ट लेवल को टॉप 3 यहाँ पे ते है ना लोनी फेलिसिटेशन प्रोग्राम पर होन बाजा अधिको अरोम मा रोग रम यहाँ पे ते है ना मामा क्लास को वा अखोटवें को वा वारम है ना कैश अवार्ड सर्टिफिकेट ले मेमेंटोस हे कोला मा होनमान होन बाजा गा मजा चोटो को एका। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पपुम परे हे मा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खन को क्लास 10 ले क्लास 12 वा डीएक छात्र टॉपर्स ने अभी ते ही फेलिसिटेट होन बाजा अधिकारे चोटे ही डंगे का PM श्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डोईमुग वा क्लास 10 टॉपर मिस यंगम माइंग गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल की मिन व क्लास 12 ह्यूमैनिटीज साइंस ले कॉमर्स स्ट्रीम व टॉपर मिस बामंग यानु PM श्री गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल डोमोग व नंगरम लीली ले गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल सागरी व नाबम पुमिन हेनंग हाजरे चीरुंग।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, तो अब आप आनंद उठा पाएंगे इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में, और इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में हम आपको कुछ बेहतरीन स्टोरीज, कुछ फिर इंफॉर्मेशन या कुछ जो है लज्जेदार मजेदार बातें आप सभी से साझा करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि एक बहुत बड़ी जिंदगी की फलसफे को आप तक पहुंचाने की। जी हाँ दोस्तों, यानी कि एक सबसे बड़ा सबक जो है उसके बारे में कुछ बातें करने की। एक बार एक पिता के मन में एक ख्याल आया कि वो अपने बेटे को आज दुनिया का सबसे बड़ा सबक सिखाए। इसके लिए उसने एक बहुत ही जो है वेल प्लान्ड, एक वेल प्लान्ड फुल प्रूफ एक प्लान उसने रचा। अपने बेटे को वो थोड़े ऊंचाई पर, काफी हाइट पर लेकर जाता है और वहां खड़े कर वो कहता है कि तुम वहां से जमीन पर छलांग मारो, मैं तुमको पकड़ लूंगा। इसके बाद बच्चा क्या कहता है दोस्तों, मैं बताती हूं कहानी आगे आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन कुछ प्यार भरे नगमे मैं आप सभी के लिए लेकर हाजिर हुई हूं। तो एंजॉय कीजिए सबसे पहले।

दोस्तों, मैं जो आप सभी से जो स्टोरी जो मैं बात कर रही थी, जिस स्टोरी के बारे में कि जो वो जो पिता है यानी कि पापा है, जो बच्चे को बहुत यकीन दिलवाता है कि बेटा तू इस ऊपर से नीचे कूद जा, मैं पकड़ लूंगा, मैं हूं ना तेरे लिए बिल्कुल खड़ा हूं। लेकिन बच्चा जो क्या होता है कि इतनी हाइट देख कर कि जमीन तो बहुत नीचे है और मैं पहाड़ पर खड़ा हूं, मैं अगर यहां से कूद गया और नीचे अगर पापा ने मुझे नहीं पकड़ा तो मुझे चोट लग जाएगी। इसलिए उसने थोड़ा सा जो है उसे झिझक हुई और उसने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं कूदूंगा पापा, मुझे डर लग रहा है और मैं गिर सकता हूं, यहां से मुझे चोट लग सकती है। तो पिता ने अपने बच्चे को विश्वास दिलाया कि बेटा तू नहीं गिरेगा, मैं हूं तुझे पकड़ लूंगा। ऐसे पिता ने कई बार, पापा ने कई बार बच्चे को बोला, विश्वास दिलवाया, और जब बच्चे को पिता पर पूरा विश्वास हो गया, अपने पापा पर पूरा विश्वास हो गया कि अगर मैं कूद भी गया तो कोई बात नहीं, मेरे पापा हैं नीचे में तो वो मुझे पकड़ लेंगे, तो 100% जब उसके विश्वास बिल्कुल तगड़ा हो गया तो बच्चा वहां से कूद गया। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि उसके पापा उसे पकड़ते हैं या उसे छोड़ देते हैं या बच्चे का क्या होता है। लेकिन इससे पहले हो जाए एक प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

तो दोस्तों मैंने कहा ना कि पापा के बोले बात पर बच्चा विश्वास करके ऊपर से कूद जाता है। अब क्या सचमुच में पापा उसे पकड़ते हैं या फिर क्या होता है? तो उसने छलांग तो लगा दिया पूरे विश्वास के साथ कि नीचे पापा खड़े हैं और अब मुझे कैच कर लेंगे, मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जब वो छपाक से जंप मारा तो पापा ने जानबूझकर अपने बच्चे को नहीं पकड़ा दोस्तों, और परिणाम स्वरूप जो है बच्चा गिर गया और उसे चोट लग गई। तब तो बच्चे ने बड़े हैरानी से अपने पिता से पूछा कि आपने तो मुझे इतना विश्वास दिलाया कि जब मैं कहूंगा कि तू कूद जा तो तू कूद जाना, मैं नीचे में खड़ा हूं, मैं पकड़ लूंगा और तुझे चोट नहीं लगेगी बेटा, लेकिन ये क्या, आपने तो मुझे पकड़ा ही नहीं और मुझे इतनी चोटें लग गई। तब तो उसके पिता जो है वो पिता बोले कि बेटा यही सबक तो मैं तुझे सिखाना चाहता था कि इस दुनिया में अपने बाप पर भी कभी विश्वास नहीं करना। और आगे क्या बोलते हैं हम और भी सुनेंगे, लेकिन इससे पहले हो जाए एक और प्यार भरा गीत केवल आप दोस्तों के लिए। एंजॉय कीजिए।

0: और दोस्तों जी हाँ, तो उसके पापा ने कहा अपने बाप पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए आज की दुनिया में। और यही सबसे बड़ा सबक मैं तुम्हें समझाना चाहता था दोस्तों। दरअसल वो पिता जो है बहुत ही अनुभवी था, उसने अपने दुनिया देखी थी और वो जानता था कि इस मतलबी दुनिया में किसी पर भी विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने अपने बच्चे के लिए, भलाई के लिए ये योजना बनाई थी कि उसे अपने बेटे को ये समझाना है कि किसी के ऊपर में भरोसा नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ा सबक जिंदगी का यही है और उसे याद रखना चाहिए। भरोसा केवल खुद पर रखना चाहिए, अपने आप पर रखना चाहिए और किसी के बातों में नहीं आना चाहिए, ना किसी के भरोसा देने पर भी उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि इंसान कभी भी पलटी मार सकता है। तो बाजी उसी के हाथ आती है जो खुद पर भरोसा कर कर जो है वो आगे बढ़ता है दोस्तों। जी हाँ, और इस छोटी सी बात को, बात छोटी हो सकती है लेकिन सबसे बड़ी सबक जो है उसके पापा ने उस बच्चे को दी। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये मेरी छोटी सी कहानी आप सभी को बेहद पसंद आई होगी। और साथ ही मैंने जो आज आप सभी के लिए सॉन्ग्स यानी कि नगमे पेश खिदमत की है, आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, इवनिंग ड्राइव को हम यहीं पर संपन्न करते हैं। मिलते हैं शाम की महफिल के सेगमेंट में। आप सब बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं

हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं दोस्तों आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, शाम के बस बजने को है, बज ही चुकी है, इनफैक्ट 5:30 और शाम के 5:30 होते ही हाजिर हो जाते हैं हम लेकर आप सभी की खिदमत में शाम की महफिल को, जहां बिल्कुल होता है बॉलीवुड ट्रैक्स, जो वो ट्रैक्स जो आपके शाम को परफेक्ट एम्बियंस देते हैं और बना देते हैं खास। वैसे तो आज कौन सा डे है? है तो दोस्तों आज सैटरडे, यानी कि वीकेंड, और वीकेंड है तो आपके लिए बहुत खास है, क्योंकि पूरे जो है वीक आपने ऑफिस जाते दौड़ा भागम भागे, स्कूल जाते कॉलेज जाते भागम भागे, लाइफ से बिल्कुल छुटकारा पाके आज शाम को बिल्कुल फ्री है और जो है आज के वीकेंड का मजा ले रहे हैं। कहीं कहीं भीषण गर्मी है दोस्तों हमारे देश में, या फिर आप जहां से भी हमें सुन रहे हैं वहां पर, या कहीं कहीं पर रिमझिम बूंदाबांदी भी हो रही है जैसे कि हमारे यहाँ। जी हाँ, और मौसम बहुत खुशनुमा है। अगर आपके शहर में मौसम बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि गर्मी है, तो कोई बात नहीं, अरुण एफएम है ना, आप सभी को ऐसे ऐसे ट्रैक्स आपको सुनाएगा कि आपके दिल को बहुत सुकून मिलने वाला है, आपको गर्मी से निजात पाने को है। वैसे शाम बिल्कुल हो चुका है, एक गर्मी हो या सर्दी, मगर एक कप चाय या कॉफी की इश्क भरी चुस्कियां तो इस वक्त बनती ही है दोस्तों। हो सकता है ना आप किसी खास के साथ में बैठे हुए हो और अपना वक्त बिता रहे हो, या फिर फोन पर अपने किसी खास स्पेसिफिक पर्सन से बात कर रहे हो, अपनों के साथ बात कर रहे हो, तो ऐसे में आपके शाम को खास बनाता हुआ अरुण एफएम लेकर आ गया है बहुत ही प्यारे प्यारे ट्रैक्स केवल आप सभी के लिए। जी हाँ, तो सदाबहार नगमा जो प्यार रोमांस और मधुर एहसासों से भर देता है दिल को, तो अब जो मैं गीत पेश खिदमत करने वाली हूँ, तो ये गीत सुनते हुए आप वाकई में कहेंगे क्या गीत अपर्णा ने सचमुच में हमारे शाम को खास करते हुए बजाई है। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी मिठास भरी ताजगी भरी गीत के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

वाकई दोस्तों, आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा जी हाँ प्रोग्राम्स को लेकर। बहरहाल आप सब आनंद उठा रहे हैं शाम की महफिल के साथ, और इसे आप सभी तक पहुंचाया जा रहा है FM बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को, आप सभी के अपनों तक। अब जो मैं नगमा पेश खिदमत करने जा रही हूँ वो बेहद खास है और मेरे दिल को भी बहुत अजीज है, बहुत प्यार है उस गीत के साथ। दोस्तों, आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती है, लेकिन इस ये जो आंखें होती है ना दोस्तों, ये जज्बातों को बयां भी कर देती है। जी हाँ, और एक और खास बात है, किसी के दिल तक जो है पहुंचने के लिए आंखों के रास्ते से ही पहुंचा जा सकता है। और साथ ही जितने भी अच्छाई भी हम करते हैं या गुनाह भी करते हैं वो आंखों से ही करते हैं, क्योंकि आंखें वो चीज होती है जो हर अच्छाई और बुराई को देखती है। लेकिन आज हम आंखों की जो है प्यार भरी आंखों की बातों को ही करेंगे, क्योंकि हमारे इस गीत जो है वो गीत बयां करता है कि जिंदगी में आंखों का, किसी की खास की आंखों का, एक्चुअली में कहा जाए तो हर किसी के नहीं, किसी खास के आंखों का हमारी जिंदगी में क्या मायने रखता है। हम सभी की आंखों पे नहीं मर मिटते हैं, लेकिन एक खास आंखें होती है जो हमारे दिल को जो है बिल्कुल कैच कर लेता है ना दोस्तों। और ये आंखें जो है बता देती है दिल की दास्तां को बिल्कुल। जी हाँ दोस्तों, आप चाहे लाखों छुपा लो, लाख बार छुपा लो अपने दिल की बात, लेकिन सामने जब आपका वो चहेता या खास इंसान आपके सामने आएगा या आ जाता है तो आपके आंखें बया कर ही देती है सभी दास्ता को। जी हाँ, तो फिर देर ना करते हुए सुना देती हूँ प्यार भरा गीत आप सभी के लिए, एंजॉय कीजिए।

0: तो दोस्तों अब जो मैं गीत पेश खिदमत करने वाली हूं, जी हाँ दोस्तों, उसमें प्यार, इंतजार और कुछ अनकही भावनाओं से भरा ये गीत है और ये शाम के सफर को बहुत खास बना देगा, क्योंकि कभी कभी किसी का नाम लेते ही दिल जो है धड़क उठता है ना दोस्तों, और प्यार के एहसास के साथ एक बेहद रोमांटिक सा फीलिंग्स देता है, और ये गीत भी कुछ ऐसा ही है जो आपको एक अंदर से फीलिंग्स जगाएगा अपने किसी खास के लिए। तो देर न करते हुए मैं आप सभी को सुना ही देती हूँ ये प्यार भरा गीत बस आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।
1: सारे गामा कार्ड

0: तो दोस्तों आज इस बहुत ही खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की जो है ये शाम की महफिल अब यहीं पर संपन्न होती है। मैं 100% उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत बहुत पसंद आए होंगे दोस्तों। तो बहरहाल ले लेते हैं एक छोटा सा हैंड सैनिटाइजर ब्रेक, क्योंकि बज चुके हैं हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 6, और शाम के ठीक 6 बजते ही हम हाजिर हो जाते हैं लेकर हिंदी फिल्मों के गीत। जी हाँ दोस्तों, तो अब से बस कुछ ही देर में मैं पेशे खिदमत करूंगी धुएंदार झूमने वाली गीतों को आप सभी के लिए। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार।

0: ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न दे। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं डीईओसी यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दोस्तों हमारे स्टूडियो में एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों फिल्म डिस्को डांसर के इस गीत के साथ ही हमारे आज के ये जो धुआंधार गीतों की लड़िया है ना दोस्तों, फिल्मी गीतों का जो प्रोग्राम है, सेगमेंट है, ये अब यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल आप सभी को बता दें कि आप से बस कुछ ही देर में यानी कि शाम के ठीक 6:10 का वक्त रहेगा, यानी कि समय रहेगा आदि समाचार का। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों आप सुन रहे थे आदि समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हाँ दोस्तों, मीडियम वेव के 444.4 मीटर पर यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा सकेंगे आज के कलाकार प्रोग्राम के साथ। जी हाँ फ्रेंड्स, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pay Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज के कलाकार के इस सेगमेंट में। ये वो सेगमेंट होता है फ्रेंड्स, जहां हम एक ही कलाकार यानी कि एक ही अदाकार, एक ही फनकार, एक ही गीतकार, संगीतकार, जी हाँ, या फिर आप कहे कि पटकथा लेखक, या फिर हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी लोग हैं, उनके बारे में हम बातें करते हैं और उनके जो है सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स, फिल्म्स के सॉन्ग्स जो होते हैं उनको आप तक पहुंचाते हैं इस सेगमेंट में। जी हाँ दोस्तों, आज मैंने अपने दौर के एक ऐसे ही एवरग्रीन जो है हीरो के बारे में बात करने की सोची है और उनके सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को आप तक पहुंचाने की सोची है, और जिनके सॉन्ग्स जो है आज भी हैशटैग इंस्टा और फेसबुक के ट्रेंडिंग रील्स पर थिरकते हुए नजर जरूर आ जाते हैं। एंड ही इज नॉन अदर देन यस एवरग्रीन देवानंद। जी हाँ दोस्तों, देवानंद भारत के मशहूर अभिनेता और निदेशक थे, जिनका वास्तविक नाम जो है धर्म देवत पिसोरीमल आनंद था।

ये शुरुआत में फिल्मों में केवल अभिनेता के रूप में अभिनय किया करते थे, मगर बाद में जब ये सुपरस्टार हीरो बन गए थे तो उन्होंने निर्माता निर्देशक का भी काम किया। आज ये हमारे बीच नहीं रहे, मगर इनके फिल्म में और इनको हमेशा जिंदा करने वाले जो है, जिंदा रखने वाले गीत हमारे बीच में है। इनका जन्म 26 सितंबर 1923 को, यानी कि 23 को, शंकरागढ़ पंजाब, यानी कि जो कि अब पाकिस्तान में है, हुआ था। जी हाँ दोस्तों, देवानंद की अगर हम फिल्मों के बारे में बात करें तो इन्होंने अपनी फिल्मों की शुरुआत जो है 1946 में हम एक है से अपनी करियर की शुरुआत की थी, जिसमें ये एक अभिनेता के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किए थे। फिल्म अफसर 1950 में इन्होंने एक निर्माता की भूमिका निभाई। बाद में आई फिल्म प्रेम पुजारी जो 1970 में आई थी, का इस फिल्म से इन्होंने डायरेक्शन के दुनिया में अपनी कदम रखी। जी हाँ, और माना जाता है देवानंद की जो है वो जो है उनका जो दोस्ती है वो बहुत ही ज्यादा जो है, अगर हम कहें तो इनका जो दोस्ती है गुरुदत्त के साथ बहुत खास रही। अशोक कुमार ने इन्हें फिल्मों में आने के लिए प्रेरित किया, अगर हम मानते हैं ऐसा तो। और इनके ढेर सारे फिल्मों के बारे में बात करेंगे, लेकिन जब हम इनके बारे में फिल्मों के बारे में बात करते हैं तो सुपर डुपर हिट फिल्म जो है गाइड से ही हम शुरू करेंगे। और न जाने कितने फिल्में हैं इनके अपने कैरियर की, तो हम इनके बारे में बातें करते करते थक जाएंगे और ये सेगमेंट यूं ही बीत जाएगा, लेकिन हो जाता है। सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों,

देव साहब के बारे में हम जितनी भी बातें कहे उतना ही कम है, तो मैं फटाफट आपको मैं कुछ इनके सुपर डुपर हिट फिल्म्स के बारे में बता दूं। जी हाँ, गाइड, ज्वेल थीफ, हरे रामा हरे कृष्णा, जॉनी मेरा नाम, काला पानी, हम दोनों, सीआईडी, पेइंग गेस्ट, बाजी, तीन देविया, असली नकली, टैक्सी ड्राइवर, काला बाजार, तेरे घर के सामने, प्रेम पुजारी, 9-10-11, तेरे मेरे सपने, हम किसी से कम नहीं, जब प्यार किसी से होता है, हीरा पन्ना लूट मार, जैसे अनेकों फिल्म जो है इन्होंने की। और खास बात तो ये है दोस्तों, जी हाँ, अगर हम कहे देवानंद जी के बारे में, देवानंद साहब के बारे में, तो आपको जानकर ये ताजुब होगा कि भारत सरकार ने उनके कपड़े पहनने के ऊपर में बैन लगा दिए थे। जी हाँ, एक रोचक किस्सा ये भी है कि देव साहब जब काला सूट पहनकर निकलते थे तो लड़कियां उन पे मर जाती थी, कुछ लड़कियों ने तो ऊपर से कूद कर जान भी दे दिए थी, इतनी फिदा थी। तो गवर्नमेंट, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी यानी कि सरकार थी, कोर्ट के माध्यम से उनके काले कपड़े पहनने को बैन कर दिया था, क्योंकि वो बहुत हैंडसम लगते थे दोस्तों, वाकई में। और देवानंद साहब का जो चलने का ढंग है वो बिल्कुल अलग है, बिल्कुल यूनिक है, जो आज तक कोई भी हीरो इसे कॉपी ही नहीं कर पाया। जी हाँ, तो मैंने बहुत सारे जो है नाम मैंने ले लिए हैं फिल्मों के, तो मैं कुछ फिल्मों का गीत मैं बिन कहे कुछ जल्दी जल्दी आप सभी को मैं सुना देना चाहती हूं, और इसके बाद और कुछ रोचक बातें फटाफट उनके बारे में करेंगे। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

दोस्तों वक्त बहुत कम रह गया है और बातें बहुत ज्यादा, तो मैं फटाफट उनके सॉन्ग्स को कट करके करके बजा रही हूं और मैं ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन साझा करना चाहती हूं। दोस्तों माना जाता है कि इनको सुरैया से प्यार हो गया था, लेकिन परिणय सूत्र में ये बंधे नहीं, बहुत ही डीप रिलेशन इनका था। गाइड में इनके साथ में बहुत सारी अभिनेत्रियां जो है उन्होंने काम किया, और उनमें से एक है हरे रामा हरे कृष्णा में जिना तामन, जो सुपर डुपर स्टार बन गई थी हरे रामा हरे कृष्णा के मूवी के बाद। जी हाँ, इनके पास माना जाता है कि 800 से ज्यादा जैकेट्स थे और वो बहुत ही पॉपुलर जैकेट्स में से वो संग्रह करते थे, जैकेट्स का इन्हें क्रेज था। एक और खास बात मैं बता दूं कि 1975 में जब इमरजेंसी लागू कर दी गई थी पूरे भारत में, उस वक्त जो है देवानंद के फिल्मों को बैन कर दिया गया था। इंदिरा गांधी उस वक्त की दादन प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थी, और उन्होंने जो है देवानंद की फिल्मों को बैन कर दिया था चलने से भारत के पूरे सिनेमा हॉल में। जी हां दोस्तों, और कोर्ट ने उन्हें काले कोट पहनने पर बैन कर दिया था। एक और रोचक बात मैं आप सभी से साझा कर दूं कि इनको पद्म भूषण एवं दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जैसे पुरस्कार से भी नवाजा गया, और साथ ही इन्होंने जो है अपने कैरियर में जो है उन्होंने बॉलीवुड को छोड़कर, बॉलीवुड में तो उन्होंने काम किया ही था, लेकिन वो हॉलीवुड में भी एक दो फिल्म कर चुके थे। तो ऐसे टैलेंटेड थे हमारे देव साहब। तो देर ना करते हुए एक और प्यार भरा गीत चलते चलते आप सभी को सुना ही देती हूं। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, देवानंद साहब ने एक लंबी दौर फिल्म इंडस्ट्री को दी और सुपर डुपर हीरो रहे, बतौर हीरो रहे, निदेशक निर्माता रहे, और जो है अनफॉर्चुनेटली 88 वर्ष की उम्र में लंदन में 3 दिसंबर 2011 को हार्ट अटैक के कारण उनका देहांत हो गया और एक बहुत ही अच्छा कलाकार हमने खो दिया। जी हाँ दोस्तों, देवानंद साहब जहां भी है उनके आत्मा को भगवान शांति दे, शांति प्रदान करे। साथ ही हम इनके जो फिल्मों के जो सुनहरे फिल्में हैं उन्हें आप सबने अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा और उनके गीतों को जरूर सुनिएगा, बहुत ही आपको पसंद आने को है दोस्तों। बहरहाल, चलते चलते दोस्तों अब वक्त हो चला है कि हम अपनी इस आज की कलाकार प्रोग्राम को देव साहब को श्रद्धांजलि देते हुए जो है अर्पित करते हुए संपन्न करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट जो इन्फॉर्मेशन के साथ साथ सॉन्ग्स से बेहद पसंद आए होंगे। बहरहाल दोस्तों, हम आप सभी को यही बता दें कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का कार्यक्रम। हम आप सभी को बता दें कि अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675

0: किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगा हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, अब आप आनंद उठा पाएंगे बैक टू बैक सॉन्ग्स के साथ। लेकिन वो कहते हैं ना कि छोड़ देना अच्छा है वो सवाल का जिसका जवाब ना मिले, छोड़ देना अच्छा है वो रिश्ता जहां कदर ना होती हो, छोड़ देना अच्छा है वो हाथ जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे, छोड़ देना अच्छा है वो दोस्त जो मतलब के साथ चले। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम इनमें से कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, हम आप सभी के साथ साथ दिल से दिल और हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अरुण एफएम का काम तो यही है, दिल से दिल की बातों को पहुंचाना और आपके अपनों तक पहुंचाना। तो बेहद चुनिंदा गीतों को लेकर मैं आप सभी के लिए हाजिर हुई हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आने को है। एंजॉय कीजिए।

真的

0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: कहिए क्या सुनेंगे आप?
1: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
0: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हां दोस्तों, वक्त हो चला है एक और धुआंधार गीतों का, यानी कि हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट्स का। किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरी खामोशी से समझते हैं लोग कि एक लाश हूं मैं, मेरी खामोशी से समझते हैं लोग कि एक लाश हूं मैं। कैसे बताऊं कि कैद सांसों के बीच जिंदा हूं मैं। काफिर समझते हैं वो मुझे, काफिर समझते हैं वो मुझे, झूठे रिवाजों से बेपर्दा हूं मैं। मेरी परवाज को कहते हैं आवारगी, मेरी परवाज को कहते हैं आवारगी, वो क्या जाने कि एक परिंदा हूं मैं। इन खोई खोई महफिलों में सबसे जुदा हर लम्हा तन्हा हूं मैं, इन खोई खोई महफिलों में सबसे जुदा हर लम्हा तन्हा हूं मैं। ना होकर भी इस दुनिया में कि ना होकर भी इस दुनिया में किसी की यादों में हर लम्हा जिंदा हूं मैं। चलिए, जिन्होंने भी इन चंद लफ्जों को लिखा है बेहद खूब लिखा है, और मैं इन लफ्जों को डेडिकेट कर देती हूं आप सभी को। जी हां दोस्तों, आज शुरू करती हूं एक और रोमांटिक और धुएंदार गीतों का सफर, जो कि जाने को है बेताब, बिल्कुल बैक टू बैक आप सभी के लिए। एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, इस सिम्बा के धुआंधार गीत के साथ ही हमारी आज की हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट अब यहीं पर संपन्न होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहद पसंद आए होंगे। रात्रि के ठीक 8 बजे का वक्त रहेगा वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप, जिसे आकाशवाणी के अरुण एफएम केंद्र द्वारा प्रसारित किया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आप सभी के अपने अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। अब से बस कुछ ही देर में यानी कि शाम के ठीक 8:15 का वक्त रहेगा अरुणाचल न्यूज रील का, तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे पाश्चात्य संगीत के कार्यक्रम के साथ, और इसे आप तक पहुंचाया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के साथ। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, Next Gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट में। भले ही ये भूले बिसरे गीत क्यों ना हो, लेकिन है तो सदाबहार नगमों का कारवां। जी हाँ दोस्तों, और हम आज भी इन गीतों पर अपने होठों पर गुनगुनाना बेहद पसंद करते हैं, और साथ ही आज भी ये हैशटैग इंस्टा तथा फेसबुक की रौनक बढ़ाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इनको इनके शुभारंभ करने से पहले, यानी कि इन नगमों की शुभारंभ करने से पहले, आप तक पहुंचाने से पहले दो लफ्ज हो जाए मेरे तरफ से कि ये इश्क यहां भी नहीं है, वहां भी नहीं है, मोहब्बत से ऊपर खुदा भी नहीं है। फलक इश्क कैसा किए जा रहा है कि फलक इश्क कैसा किए जा रहा है, जुदा भी जमीन से जुदा भी नहीं है। समंदर बनाने चले हैं जहर को, कि समंदर बनाने चले हैं जहर को, अभी ठीक से कुछ खुदा भी नहीं है। जहां सोच और इश्क मिलते हैं दोनों, कि जहां सोच और इश्क मिलते हैं दोनों, वही बंदगी है, खुदा भी वही है। वाकई में दोस्तों, जहां मोहब्बत है वहां खुदा ही तो बसता है। चलिए आपको एक बहुत ही प्यारा सा नगमा मैं सुना दूं, जहां प्रेम विश्वास जीवन भर साथ निभाने की खूबसूरत एहसास को बयां करता हुआ ये गीत है। जी हाँ दोस्तों, तो दिल के गहराइयों को बस छूने को है। एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत सी गीत के बाद एक और गीत आप सभी के लिए पेश खिदमत करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बेहद पसंद आने को है, क्योंकि कुछ गीत होते ही ऐसे हैं जो समय की सीमाओं को पार कर जाते हैं। जी हाँ, वक्त का कोई पाबंदी नहीं रहता और ये हमेशा जो है सदाबहार रहते हैं। इस गीत की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि इसकी बेफिक्र बेफिक्र मैं कहूंगी मस्ती और दिल की आवारगी को बयां करने वाला अंदाज। जी हाँ, आज भी ये गीत जो है पुराने संगीत प्रेमियों के दिल में एक खास जगह बनाए रखता है। तो एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत सी गीत को।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारी आज की ये भूले बिसरे गीतों का सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने बेहद पसंद आए होंगे। एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी की दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। बहरहाल दोस्तों, चलते चलते वक्त हो चला है आप सभी से अलविदा कहने को। हम ये उम्मीद रखते हैं कि हमारे आज के इस तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। आज के इस कार्यक्रम को आप तक पहुंचाने में सहयोगी थे संचालन निष्पादक गए रहते, तकनीकी अभियंता डी नियोग तथा स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सभी साथियों के साथ मैं थी आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा। बहरहाल चलते चलते हम एक ही बात कहेंगे जो कि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि संभव की सीमा जाने का केवल एक ही मार्ग है और वो है असंभव से भी आगे निकल जाना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी की मंगल कामना करते हुए हम विदा चाहेंगे, अलविदा कहेंगे। कल मिलते हैं सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा ढेर सारे खुशियां लेकर आपके लिए आए। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। और आगे के लिए आप एफएम गोल्ड चैनल पर बने रहें।

0: ये सुनी राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती।
1: साइलेंस, लाइट्स, साउंड, कैमरा, एक्शन।

नमस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती के जून महीने के अंक में आपका स्वागत है। चित्र भारती के इस अंक में संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में

मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट और स्मृति शेष में नमन जानी मानी गायिका सुमन कल्याणपुर को। सबसे पहले संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में 21 जून को मनाया जाता है विश्व संगीत दिवस। इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी सन 1982 में। 21 जून का ही दिन इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन होता है समर सॉल्स्टिस यानी ग्रीष्म संक्रांति, साल का एक सबसे लंबा दिन, ताकि आप संगीत की स्वर लहरियों का ज्यादा मजा ले सकें। संगीत सिर्फ एक कला नहीं, संगीत जीवन का सुकून है। संगीत न होता तो कितनी सुनी होती ये दुनिया। आज चित्र भारती के संपादकीय में हम विश्व संगीत दिवस पर लाए हैं एक खास पेशकश, ऐसे कलाकारों की बातें जो वैसे तो शास्त्रीय संगीत में सक्रिय रहे पर जब वो फिल्म संगीत के मैदान में आए तो उन्होंने अपनी और ज्यादा चमक बिखेरी और हमें दिए कुछ अनमोल गाने, यानी कुछ ऐसे गायक और संगीतकारों की बातें जो शास्त्रीय संगीत की दुनिया से आते हैं। शास्त्रीय संगीत और फिल्म संगीत हमेशा दो अलग अलग ध्रुव रहे हैं। एक लंबे समय तक शास्त्रीय संगीत की

दुनिया में फिल्म संगीत को कमतर माना जाता रहा और शास्त्रीय संगीत के कलाकारों ने फिल्म संगीत से बाकायदा दूरी बनाकर रखी। पर फिर ऐसा वक्त आया जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया के दिग्गजों ने फिल्म संगीत की जमीन पर अपने कदम रख ही दिए। अगर शुरू से बात करें तो बेगम अख्तर जैसी दिग्गज गायिकाओं ने फिल्मों में काम भी किया और गाने भी गाए। सन 1930 के जमाने में उन्होंने एक दिन का बादशाह, नल दमयंती और जवानी का नशा जैसी फिल्मों में अभिनय किया था। सन 1942 में उन्होंने महबूब खान की फिल्म रोटी में संगीतकार अनिल बिस्वास के निर्देशन में गाना भी गाया। इसके अलावा सत्यजीत रे ने सन 1958 में एक फिल्म बनाई जलसा घर। इस फिल्म में उस्ताद विलायत खान साहब का संगीत था। ये फिल्म अपने लाजवाब संगीत के लिए जानी जाती है। बेगम अख्तर ने इस फिल्म में ये

ऐसे मौकों पर फिल्म संगीत अपनी अप्रतिम ऊंचाई तक पहुंच जाता है। शास्त्रीय संगीत के कई दिग्गजों ने फिल्म संगीत में अपना योगदान दिया है। सन 1952 में विजय भट्ट ने एक फिल्म बनाई बैजू बावरा। इस फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने राजी किया मालवा घराने के संस्थापक उस्ताद अमीर खान साहब को। कितना सुखद था कि इस फिल्म का एक गाना पंडित डी वी पलुस्कर और उस्ताद अमीर खान साहब ने साथ में गाया था।

0: अब आते हैं हिंदी सिनेमा की एक अजीमुशान फिल्म की ओर। ये फिल्म थी के आसिफ की मुगले आजम। इस फिल्म में एक खास सिचुएशन ऐसी है जिसके लिए के आसिफ को चाहिए थी पटियाला घराने के दिग्गज गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज। किसी तरह उन्हें मनाया गया। कहते हैं कि उन्होंने के आसिफ से एक बड़ी रकम की मांग की थी जिसे आसिफ साहब ने फौरन मान लिया था, और इस तरह से मुगले आजम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की आवाज में दो गाने रिकॉर्ड हुए। एक गाना था ये
1: जो गाना बना,
0: और दूसरा गाना था

0: 1960 में आई फिल्म कोहिनूर। इस फिल्म में एक गाने में सितार बजाया था उस्ताद अब्दुल हलीम जाफर खान साहब ने। कहते हैं कि इस गाने में अभिनय के लिए दिलीप कुमार ने महीनों उस्ताद जी से सितार की तालीम ली थी। इसी तरह से फिल्म मेरी सूरत तेरी आंखें के इस गाने में तबला बजाया था बनारस के बेमिसाल तबला वादक गुदई महाराज यानी पंडित सामता प्रसाद जी ने।
1: नाचे मन मोरा मगन तिक दा धिक धिक।
0: वी शांताराम ने सन 1964 में बनाई फिल्म गीत गाया पत्थरों ने। इस फिल्म में संगीत था रामलाल जी का जो खुद एक सिद्ध शहनाई वादक थे। इस फिल्म का शीर्षक गीत गाया था जयपुर घराने की दिग्गज गायिका विदुषी किशोरी अमोनकर।

0: क्योंकि यहाँ हमने रामलाल जी की शहनाई का जिक्र किया तो इसी बहाने याद कर लें जाने माने शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब को। सन 1959 में आई विजय भट्ट की फिल्म गूंज उठी शहनाई। इस फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक में शहनाई बजाई थी उस्ताद बिस्मिल्ला खान साहब ने, पर गानों में बजी शहनाई रामलाल जी ने खुद बजाई थी। सन 1966 में एक फिल्म आई थी लड़की सह्याद्री की। वी शांताराम के निर्देशन वाली इस फिल्म में मेवाती घराने के प्रसिद्ध गायक पंडित जसराज ने एक गीत गाया था।
1: वंदना करो अर्चना करो,
0: ये गीत राग अहीर भैरव पर आधारित था। गीतकार थे भरत व्यास और संगीतकार थे वसंत देसाई। बहुत बाद में पंडित जसराज ने फिल्म 1920 में ये गाना गाया। सन 1976 में आई फिल्म कादंबरी। इस फिल्म में संगीत दिया था उस्ताद विलायत खान साहब ने। उन्होंने इस फिल्म में आशा भोसले से अमृता प्रीतम की ये रचना गवाई थी।

जानी मानी गायिका विदुषी बेगम परवीन सुल्ताना ने भी कई फिल्मी गाने गाए हैं। उनका सबसे मशहूर गाना है फिल्म कुदरत का वो गीत, जिसे आर डी बर्मन ने स्वरबद्ध किया था। इस गाने के गीतकार थे मजरूह सुल्तानपुरी।

0: पर उन्होंने इसके अलावा भी कई फिल्मों में गाया है। विदुषी परवीन सुल्ताना ने फिल्म गदर में ये गीत गाया। इस गाने में उनके साथ थे पटियाला घराने के जाने माने गायक पंडित अजय चक्रवर्ती। सन 1985 में अमोल पालेकर ने फिल्म अनकही बनाई। इस फिल्म का संगीत जयदेव ने दिया था। पंडित भीमसेन जोशी ने इस फिल्म में दो गाने गाए थे,
1: रघुवर तुम को मेरी लाज, रघुवर तुम को मेरी लाज।
0: सन 1985 में फिल्म आई सुरसंगम, जिसके जरिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया के अनमोल पंछी उतरे फिल्म संगीत के मैदान पर। पंडित राजन और पंडित साजन मिश्र, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: माने बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया और जाने माने संतूर वादक पंडित शिव कुमार शर्मा ने ऐसे तो कई फिल्मी गानों में अपने अपने साजों का कमाल दिखाया है, पर आगे चलकर उन्होंने जोड़ी बनाई शिव हरि की जोड़ी और कई फिल्मों में संगीत दिया। ऐसी ही एक फिल्म थी सिलसिला
1: जो तुम तोड़ो पिया, मैं नहीं तोडूं रे जो।
0: जाने माने सितार वादक पंडित रविशंकर ने कई फिल्मों में संगीत दिया जैसे नीचा नगर, पाथेर पांचाली, अपराजितो वगैरह, पर उन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म अनुराधा में क्या कमाल के गाने बनाए थे। जाने कैसे

1997 में सई परांजपे ने फिल्म साज बनाई। इस फिल्म में उस्ताद जाकिर हुसैन ने न केवल अभिनय किया था बल्कि कुछ गाने भी बनाए थे। चूंकि जिक्र चला है तो आपको बता दें कि उस्ताद जाकिर हुसैन के पिता उस्ताद अल्लाह रखा खान साहब ने भी कई फिल्मों में संगीत दिया था। यह है उनका संगीतबद्ध किया एक गाना।

आपने देखा कि शास्त्रीय संगीत की दिग्गज हस्तियों ने फिल्म संगीत का हाथ कभी कभी पकड़ा है। जब शास्त्रीय संगीत की बड़ी हस्तियां फिल्मी गानों से जुड़ती हैं, तो फिल्म संगीत और ज्यादा निखर जाता है। ये था विश्व संगीत दिवस के मौके पर चित्र भारती का संपादकीय शास्त्रीय संगीत के दिग्गज फिल्म संगीत की दुनिया में। और अब मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। मुंबई में 15 जून से 21 जून तक आयोजित किया जा रहा है 19वां मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। इस फिल्म समारोह का आयोजन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय करता है। ये एक ऐसा फिल्म समारोह है जिसमें डॉक्यूमेंट्री, शॉर्ट फिक्शन और एनिमेशन फिल्में दिखलाई जाती हैं। ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डॉक्यूमेंट्री फिल्म समारोह है। आपको बता दें कि मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आरंभ सन 1990 में हुआ था। ये फिल्म समारोह हर दूसरे बरस आयोजित किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र को गोल्डन कॉन्च पुरस्कार दिया जाता है और 10 लाख रुपए नगद मिलते हैं। इस समारोह में इस बरस कुल मिलाकर 55 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता श्रेणी के सभी पुरस्कारों का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जूरी के द्वारा किया जाता है। प्रतियोगिता फिल्मों के अलावा AIFF जूरी रेट्रोस्पेक्टिव, बेस्ट ऑफ द फेस्टिवल्स, MIFF प्रिज्म, कंट्री फोकस डॉक्यूमेंट्री और रीस्टोर्ड क्लासिक्स जैसे कई विशेष पैकेज इस फिल्म समारोह का हिस्सा हैं। इस फिल्म समारोह के दौरान पैनल चर्चा, एक खुला मंच, सेमिनार और डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण पर कार्यशालाएं भी आयोजित की जाएंगी। ये फिल्म निर्माताओं और फिल्म प्रेमियों के लिए एक अनूठा मंच है जहां आकर वो अपने विविध दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं और आगे बढ़ने के अवसरों का पता लगा सकते हैं। इस फिल्म समारोह में एक सेक्शन है प्रिज्म, जिसमें भारत और दुनिया भर की चोटी की शानदार डॉक्यूमेंट्री फिल्में दिखाई जाएंगी। इस फिल्म समारोह में वेव्स डॉक बाजार का भी आयोजन किया जा रहा है। ये एक ऐसा मंच है जो फिल्म निर्माण की यात्रा को पोषित करेगा और गति प्रदान करेगा। इसमें है एक व्यूइंग रूम जहां रजिस्टर्ड रिप्रेजेंटेटिव को एक समूह के सामने अपनी डॉक्यूमेंट्री, लघु फिल्म या एनिमेशन फिल्म प्रदर्शित करनी होगी। इस तरह से ये जगह वितरण सौदे हासिल करने, सह निर्माताओं को आकर्षित करने और फिल्म महोत्सव स्क्रीनिंग के लिए पैसे जुटाने का एक लॉन्च पैड बनेगा। इसके अलावा एक इमर्सिव मार्केट भी है जो पहली बार शामिल किया जा रहा है। इसमें इमर्सिव कंटेंट क्रिएटर्स, प्रोड्यूसर्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स के लिए एक मिलन स्थल होगा जहां आकर वो आपस में कोलैबोरेट कर पाएंगे। VR, AR, XR और इंटरएक्टिव अनुभवों पर केंद्रित ये मार्केट नई परियोजनाओं को प्रदर्शित करने और सहयोग को बढ़ावा देने का काम करेगा। इस बार के फिल्म समारोह में कई मास्टर क्लासेस भी आयोजित की जाएंगी, जैसे फास्ट फिल्म क्या माइक्रोड्रामा सिनेमा का फास्ट फैशन है या फिर विचार

0: आकार से रूपरेखा तक एक दृश्य की संरचना। ये थी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पर एक रपट। और अब स्मृति शेष में आज हम नमन कर रहे हैं जानी मानी पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को। 31 मई को सुमन कल्याणपुर हमारे बीच नहीं रही। स्मृति शेष। कम लोग जानते हैं कि सुमन कल्याणपुर का जन्म 28 जनवरी 1937 को भवानीपुर बंगाल में हुआ था। ये जगह अब बांग्लादेश में है। पांच बहनों में सबसे बड़ी सुमन की परवरिश मुंबई में हुई। ये वो जमाना था जब लड़कियों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। ऐसे में उनकी दिलचस्पी गायन में हो गई।
1: 1953 में जब मैं आर्ट स्कूल में थी, मुझे किसी फिल्म के लिए गाने का मौका मिला, मगर केवल गाने ही रिकॉर्ड हो पाए, फिल्म नहीं बनी। उसके बाद एक मराठी फिल्म में गाना गाया, उसका नाम था शुक्राची चांदनी। लेकिन बात यह है कि उस फिल्म की चांदनी भी स्टूडियो के सेट पर भी उतरी नहीं, वो भी नहीं बन पाया। फिर उसके बाद शेख मुख्तार की फिल्म बनी मंगू, जिसका संगीत मोहम्मद शफी साहब ने दिया है। इस फिल्म के लिए मेरा गाना जब रिकॉर्ड हो रहा था तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। ये देख करके लता दीदी स्वयं वहां आई हैं और बहुत देर तक मुझसे बात करती रही, बिल्कुल सगी बहन की तरह।

इसके बाद उन्हें कुछ और गाने मिले, जैसे मियां बीवी राजी, बात एक रात की।

और राजकुमार। सुमन कल्याणपुर के जीवन का सबसे बड़ा दुख ये रहा कि उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती थी, तभी तो उनके गानों को लता मंगेशकर के गाने समझ लिया जाता था।

0: बहुत बरस पहले सुमन कल्याणपुर विविध भारती के स्टूडियो में आई थी और उन्होंने फौजी भाइयों के लिए जयमाला कार्यक्रम पेश किया था।
1: कई बरसों के बाद आज फिर से मुझे आपसे बात करने का मौका मिला है। आप हमें सुरक्षित जीवन प्रदान करते हैं, देश की आन बान के लिए अपने प्राणों की आहुति तक देने में पीछे नहीं हटते। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हम आपके लिए कुछ नहीं सोचते। हम कलाकार अपनी कला से आपका मनोरंजन करते हैं, अपने गीतों से आपके हर क्षण में सहभागी बनते हैं। आप युद्ध में हो या शांति में, सुख में हो या दुख में, परिवार के साथ हो या अकेले, भीड़भाड़ वाले शहर में हों

हम सब बहन भाई संगीत में रुचि रखते हैं। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो उस जमाने में कुछ लोकप्रिय गीत गाया करती थी। उस जमाने के गायिकाओं में से नूरजहां जी और लता दीदी के गीत मुझे बहुत ही अच्छे लगते थे। जिन गीतों ने मुझे बहुत आकर्षित किया वो गीत एक से बढ़कर एक मधुर हैं, और ऐसे कई गीत हैं जो मुझे बहुत ही पसंद हैं। जब भी कोई नया गीत हमें मिल जाता तो मैं और मेरी सहेली शारदा बल से हमारे छत पर बैठकर अक्सर वो गीत गाया करते थे। उनमें से कुछ गीतों की शुरुआत मैं आपको गाकर बताती हूँ। नूरजहां जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है।

0: कह न सके वो किसी को अपना बनाए क्यों।
1: मुझे याद है लता दीदी एक बार हमारे पड़ोस में आई थी, तब मैं स्कूल में पढ़ती थी। मैं बार बार इधर से उधर उधर से इधर आ जा रही थी बस लता दीदी को देखने के लिए, कुछ बोलने के लिए, मगर बोलना तो क्या, उनको देख भी ना पाई। खैर धीरे धीरे समय बीत गया, मैं भी बड़ी हो गई।
2: एक समय ऐसा आया जब लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के बीच रॉयल्टी को लेकर मनमुटाव हो गया था। ऐसे में लता जी ने रफी साहब के साथ गाना बंद कर दिया था। इस पूरे दौर में सुमन कल्याणपुर ने मोहम्मद रफी के साथ कई युगल गीत गाए। फिल्म दिल ने फिर याद किया।
0: फिर कोई
2: फिल्म सूरज।

सुमन जी के गीतों में शामिल हैं कुछ भोजपुरी गाने भी। सुमन कल्याणपुर चली गई, लेकिन उनकी आवाज हमेशा कायम रहेगी और हमारे मन की वादियों में यादों के फूल खिलाती रहेगी।

ये था राष्ट्रीय फिल्म पत्रिका चित्र भारती का इस महीने का अंक। शोध, आलेख, स्वर और संपादन यूनुस खान। प्रस्तुति अनुश्री पाठक। राष्ट्रीय प्रसारण के लिए फिल्म पत्रिका चित्र भारती का निर्माण विविध भारती मुंबई में किया गया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल संवाद और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है।
1: देशर प्रधानमंत्री भावे दायित्व ग्रहण करिवा दिनरु
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पदभार संभालने के बाद से राष्ट्रीय हित में कई कदम उठाए हैं। इस महीने उन्होंने लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल पूरा करने का रिकॉर्ड बनाया। मैं सभी नागरिकों की तरफ से इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए उन्हें बधाई देती हूं। मैं कामना करती हूं कि वे देश के लोगों के हित के लिए निरंतर काम करते रहें और भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार करने में राष्ट्र का नेतृत्व करते रहें।
1: यह मोर आंतरिक कामना।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं से सशक्त होकर जनजातीय समुदाय भारत के विकास में सक्रिय योगदान दे रहे हैं। उन्होंने पूर्वी भारत के विकास में तेजी लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पूर्वोदय दृष्टिकोण का भी उल्लेख किया।
3: ओडिशा में आर्थिक गतिविधियां, निवेश और उद्योगों को आकर्षित करने का सामर्थ्य आज नजर आ रहा है। केंद्र सरकार का विजन है पूर्वी भारत के विकास से भारत का विकास। इसलिए हम पूर्वोदय की नीति पर काम कर रहे हैं। जिस पूर्वी भारत को कांग्रेस के दौर में पिछड़ेपन का पर्याय बना दिया गया था, आज वो प्रगति का प्रवेश द्वार बन रहा है।
0: इस दौरान ओडिशा में 47,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बाद में प्रधानमंत्री हुगली जिले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। प्रधानमंत्री ने किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त के रूप में 18,880 करोड़ रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे देश भर के 9,44,00,000 से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा।
3: साथियों, आज पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में पैसे भेजे गए हैं। और पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए एक और खुशी की खबर है, आज से राज्य में पीएम फसल बीमा योजना शुरू की जा रही है।
0: प्रधानमंत्री कोलकाता में कल आईएनएस दुनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रय का अनावरण करेंगे। इन पोतों में 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग किया गया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल विश्व भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है बढ़ते उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। मुख्य कार्यक्रम कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। रेड रोड पर राष्ट्रीय कार्यक्रम 5:00 शुरू होगा। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा कल आयोजित की जाएगी। ये पुनर्परीक्षा भारत के 551 शहरों और विदेश के 14 शहरों में होगी। इन पुनर्परीक्षा में 22,79,000 से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा से पूर्व राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किए हैं। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य को एक बार फिर बंद कर दिया गया है। यह फैसला लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई का हवाला देते हुए लिया गया है। महाराष्ट्र के परभणी जिले के मनवत तालुका में आज एक निर्माणाधीन मंदिर का ढांचा गिरने से कम 5 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 40 अन्य घायल हो गए। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच और शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government, in the presence of Mr. Modi, the President said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
2: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
4: Addressing the public gathering, Prime Minister Narendra Modi lauded Odisha's progress as the state completed 2 years under Chief Minister Mohan Charan Majhi, saying it is moving rapidly on the path of development and contributing significantly to the growth of eastern India. The Prime Minister today inaugurated and laid the foundation stones for development projects worth around 47,000 crore rupees across multiple sectors. He also extended birthday greetings to President Draupadi Murmu and said it was a privilege to visit her native village, Paharpur. Later, Prime Minister Narendra Modi took part in Paschim Bango Divas celebrations at Tarakeshwar in Hooghly district of West Bengal. He also released the 23rd installment of PM Kisan scheme worth 18,880 crore rupees, benefiting over 9.44 crore farmers across the country. The National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026, re-examination is scheduled for tomorrow. The re-examination will be held across 551 cities in India and 14 cities abroad for over 22.79 lakh candidates. Ahead of the examination, the National Testing Agency, NTA, has conducted nationwide mock drills as part of the preparations. The NTA said it is fully prepared for the smooth, fair and transparent conduct of the examination. Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today inaugurated Sri Ambabai Temple Development Project in Kolhapur worth over 1,445 crore rupees. Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis and other dignitaries were present on the occasion. Addressing a public gathering, Mr. Shah said the Sri Ambabai Temple, located in the historic city of Karvir, is a major center of faith for devotees from across the country. At least 5 devotees lost their lives and nearly 40 others were injured after a portion of a temple structure collapsed in Manvat Taluka of Maharashtra's Parbhani district today. The incident occurred when a large number of devotees

0: had gathered at the temple for darshan. Rescue teams rushed to the spot and launched relief operations immediately. Around 20 to 25 people were rescued from the debris, while nearly 15 injured devotees are undergoing treatment at a nearby hospital. Prime Minister Narendra Modi and Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis have expressed their condolences to the families of the pilgrims who lost their lives in the accident. Chief Minister Devendra Fadnavis announced financial assistance of 5 lakh rupees each for the families of those who lost their lives in the accident. International Yoga Day 2026, IDY 2026, will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Day of Yoga with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of IDY 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. Iran's Joint Military Command announced today that the Strait of Hormuz has been closed once again, citing continued Israeli military operations in Lebanon and what it described as U.S. bad faith and failure to uphold commitments aimed at ending the conflict. And with that, we end this news bulletin.
1: Namaskar. Akashvani se Vishw Darpan ke saath, main Sir Firuzi. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया, कहा वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीती। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत हमेशा शांति और सहयोग का पक्षधर रहा है, क्योंकि जटिल वैश्विक मुद्दों और युद्ध जैसे संकटों का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति से ही संभव है। राष्ट्रपति ने मोहन चरण मांझी सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ओडिशा के मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एक जनसभा में ये बात कही। राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व नेताओं के साथ अपने दूरदर्शी शासन और संपर्क के जरिए वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए योग। ये विषय उम्र बढ़ने के साथ स्वस्थ, सक्रिय और सम्मानित जीवन जीने के लिए योग का आजीवन अभ्यास करने के महत्व पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में ऐतिहासिक रेड रोड पर आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में सामान्य योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। इस कार्यक्रम में हजारों लोग योगासन करेंगे, जबकि देश दुनिया के लाखों लोगों के वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की संभावना है। दुनिया भर में भारतीय दूतावास और राजनयिक मिशन कल 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए पूरी तरह तैयार हैं। एक रिपोर्ट।
2: नेपाल में आज भारतीय दूतावास ने लुम्बिनी डेवलपमेंट ट्रस्ट और बीपी कोइराला इंडिया नेपाल फाउंडेशन के सहयोग से योगासन कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में वरिष्ठ अधिकारी और सैकड़ों लोग शामिल हुए। चीन में भारतीय दूतावास ने पेइचिंग में आयोजित योग कार्यक्रम की झलकियां साझा की। इस कार्यक्रम में लोगों ने बड़े उत्साह से योग सत्रों में भागीदारी की। वहीं जापान में भारतीय दूतावास ने कल सुकीजी होंगन जी मंदिर में योग दिवस कार्यक्रम आयोजित करने की घोषणा की है। दूतावास ने लोगों को योगासन कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। इस बीच ओमान में भारत के राजदूत प्रशांत पिसे ने भारतीय समुदाय के सदस्यों और भारत के मित्रों को कल दूतावास में होने वाले योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: इस बीच संयुक्त अरब अमीरात में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉक्टर दीपक मित्तल के नेतृत्व में जबल हवीद पर्वत की चोटी पर सुबह सुबह योगासन और

0: ध्यान के सत्र आयोजित हुए। इस कार्यक्रम का आयोजन अल एन शहर के भारतीय सामाजिक केंद्र ने किया। उधर दुबई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्प्रिट काउंसिल के साथ कल सुबह 5:30 बजे से 6:30 बजे तक दुबई पुलिस अधिकारी क्लब में योगासन कार्यक्रम आयोजित करेगा। अबुधाबी में भारतीय दूतावास सुबह 8 बजे से 9 बजे तक निर्देशित योग सत्र के लिए प्रतिभागियों को आमंत्रित कर रहा है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने आज घोषणा की है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य को फिर से बंद कर दिया गया है। लेबनान पर इसराइल की सैन्य कार्रवाई जारी रहने का हवाला देते हुए ये फैसला किया गया है। एक रिपोर्ट।
1: ईरान ने कहा है कि ये संघर्ष खत्म करने की प्रतिबद्धताओं को बनाए रखने में अमेरिका विफल रहा है और इससे उस पर विश्वास कम हुआ है। सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी दी कि यदि इसराइल के हमले जारी रहे तो और उपाय किए जाएंगे। ये घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है जब इस सप्ताह के शुरू में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते के बाद हॉर्मुज के रास्ते वाणिज्यिक जहाजों की आवाजाही फिर शुरू हो गई थी। इस बीच दक्षिणी लेबनान पर इसराइल के हवाई हमलों में 2 बच्चों सहित 16 लोग मारे गए। संघर्ष विराम समझौते की खबरों के कुछ घंटों बाद ही ये हमले हुए। लेबनान की राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी ने बताया कि हमलों में नावतीह शहर और पड़ोस के कई गांवों को निशाना बनाया गया। माना जा रहा है कि इस हमले में 7 लोग मलबे में दबे हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच अगले दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। ये वार्ता कल शुरू होनी थी लेकिन लेबनान में इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जारी संघर्ष के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमरीका और ईरान के बीच होने वाली इस नई वार्ता में संभावित परमाणु समझौते पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बातचीत हाल ही में दोनों देशों के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बाद हो रही है जिसका उद्देश्य पश्चिम एशिया में तनाव और संघर्ष को समाप्त करना है। अमेरिकी मीडिया के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वरिष्ठ सलाहकार और दामाद जेरेड कुशनर भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। हालांकि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच बातचीत कब शुरू होगी इसकी आधिकारिक जानकारी अभी नहीं दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए उन्हें मजबूत और प्रभावशाली नेता बताया है। एक साक्षात्कार में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि श्री मोदी के पिछले 12 सालों के नेतृत्व में भारत को मजबूती और स्थिरता मिली है। उन्होंने कहा कि भारत और अमरीका के बीच व्यापारिक संबंध अच्छे हैं और दोनों देशों के बीच कारोबार जारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया भर में सम्मान मिलता है और वो सशक्त नेता हैं। देश भर में बढ़ती महंगाई और आर्थिक दबाव के कारण हफ्तों से चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बाद बोलिविया के राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। एक रिपोर्ट।
2: राष्ट्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज ने अवरुद्ध सड़कों को खोलने और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आपातकाल लागू करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि बोलिविया के लोग अब सड़क अवरोधों के बंधक नहीं रह सकते जिन्होंने काम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बाधित कर दिया है। श्रमिक संघों, किसानों और पूर्व राष्ट्रपति इवो मोरालेस के समर्थकों द्वारा समर्थित ये प्रदर्शन हाल के हफ्तों में और तेज हो गए हैं में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति पाज के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। लंबे समय से जारी सड़क अवरोधों के कारण कई क्षेत्रों में भोजन, ईंधन और चिकित्सा आपूर्ति की कमी हो गई है और आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
0: सीरिया के उत्तरी अलेप्पो प्रांत में अज्ञात व्यक्ति ने 2 सैनिकों की हत्या कर दी। रक्षा मंत्रालय के हवाले से सरकारी समाचार एजेंसी सना ने कहा कि दोनों सैनिकों को अलेप्पो के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में मनबिज शहर के निकट निशाना बनाया गया। सीरिया में सत्ता हस्तांतरण की अवधि में सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। यूनान में आज भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.8 मापी गई। यूरोपीय भूमध्य सागरीय भूकंपीय केंद्र के अनुसार ये भूकंप क्रीट द्वीप पर रेथिमनो शहर के पास 13 किलोमीटर की गहराई पर आया। अब तक जानमाल के किसी नुकसान की कोई खबर नहीं है। चेन्नई में भारत ने तीसरे और अंतिम एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से जीत ली है। भारत ने 29वें ओवर में एक विकेट पर 224 रन बनाकर जीत हासिल की। इससे पहले अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 218 रन बनाए थे। प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड मिला। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत को शांति और सहयोग का पक्षधर बताया। कहा, वैश्विक संकटों और युद्ध जैसी परिस्थितियों का समाधान संवाद और कूटनीति से ही संभव। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर योगाभ्यास के दौरान राष्ट्र का नेतृत्व करेंगे। ईरान ने युद्ध विराम उल्लंघन के विरोध में हॉर्मुज जल डमरू मध्य बंद किया। और तीसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से हराकर श्रृंखला 3-0 से अपने नाम की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I'm Abhineet Shukla with the World News. The headlines. President Draupadi Murmu says India has consistently emerged as voice of peace, dialogue and cooperation as it believes issues can only be resolved through mutual discussion and not war. Prime Minister to lead International Day of Yoga 2026 celebrations at Kolkata's historic Red Road tomorrow. Iran closes Strait of Hormuz overseas fire violation. And in cricket, India clean sweeps 3-match series against Afghanistan 3-0, defeating visitors by 9 wickets in third ODI at Chennai. And now the news in detail. President Draupadi Murmu today lauded Prime Minister Narendra Modi's leadership, stating that he has significantly enhanced India's prestige and influence on the global stage through his visionary governance and constructive engagement with the world leaders. Addressing a large public gathering at Rai Rangpur in Odisha's Mayurbhanj district, organized to mark the completion of 2 years of the Mohan Charan Majhi government in presence of Mr. Modi, the president said, India has consistently emerged as a voice of peace, dialogue and cooperation under Prime Minister Modi's stewardship.
4: Since assuming the office, Prime Minister Narendra Modi has taken several steps in the national interest. This month, he set a record for the longest continuous tenure as an elected Prime Minister. On behalf of all citizens, I congratulate him on this historic achievement. I wish that he may continue to benefit the people of the country with his vision and lead the nation in realizing the resolve to transform India into Viksit Bharat by 2047.
3: US President Donald Trump praised Prime Minister Narendra Modi as a strong and effective leader, describing him as one of the world's most influential figures alongside Chinese President Xi Jinping. In an interview with an American news portal, Trump said, Modi has provided stability to India after years of frequent leadership changes and noted that he has remained in power for more than 12 years. Discussing US-India ties, Mr. Trump said, bilateral trade has become fairer and noted that the two countries continue to do significant business together. Mr. Trump also described Mr. Modi as highly respected internationally and tougher than his calm public demeanor suggests. International Day of Yoga 2026 will be celebrated tomorrow to mark the 12th International Yoga Day with the theme Yoga for Healthy Aging, which highlights the importance of adopting yoga as a lifelong practice for healthy, active and dignified aging. The main event of International Day of Yoga 2026 will be held at the historic Red Road in Kolkata in West Bengal, where Prime Minister Narendra Modi will lead the nation in the practice of the Common Yoga Protocol. More from our correspondent.
5: The Ministry of Culture is organizing a special yoga celebrations across 100 iconic locations in the country, connecting India's rich cultural heritage, historical landmarks and yoga traditions. As part of this initiative, major celebrations will be held at 12 prominent locations including Red Fort in New Delhi, Haridwar in Uttarakhand, Konark in Odisha, Hampi in Karnataka, Mahabalipuram in Tamil Nadu, Mumbai in